जय गुरु भाई गुरु, आप सबनों गणिमान स्वागत करो हूँ हमारी आज नी परमात्मी सभा में। आप सब हम रीडिया हो आपलो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते। मुँह हो आपने हाथे आपनी बोनंजली पारश्वर ने आजवार मंगलवार ने तारीख 18 अगस्त 2026 नो दाड़ो है। माइन बुनो में देखी रहा हूँ कि अपने स्टूडियो ने घड़ी में परमात्मा 6 बाकी के हैं। तो अब आपने शुरुआत करा परमात्मी सभा में प्रसारित धावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। माइन बुनो आज सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ती की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना थकी। इना में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथी भक्ति में कीर्तन ने अनस क्रम में अगाड़ी बढ़ंगा किसान भाई बुनो की जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मु आपनी बुन अंजलि पारेश्वर ने हाथी। इनिस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत करेंगा जेने कह बालकों बालपन इटली कार्यक्रम सच्चा बचपन। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7 बजे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मु आपनी बुन अंजलि पारेश्वर ने हाथी। भाई बहनों इनिस कड़ी में अपने अगाड़ी रुक करेंगा तमारी ने हमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं की आवाज ने आड़ी। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे। इनिस कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ंगा अपने अधिकार कानून नियम तक की जुड़ू कार्यक्रम सच्चा स्वराज। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8 बजे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर एटले मु तुम्हारे हाथे रहेंगा मारा रेडियो साथी जागृति भट्ट। अनस क्रम में अगाड़ी बढ़ते तके अपना रुक करेंगा राजस्थानी गीत तकी जुड़ कार्यक्रम लोक संगीत। आ कार्यक्रम आप हमारी शकोगा ठीक 8:30 माते। माइन बुनो बीजो कार्यक्रम शुरू था ठीक 9 बजे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल। इन्हें बाद माइन बुनो ठीक 9:30 माते आप हमरोगा कार्यक्रम समस्या समाधान। नया कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट ने मो आपनी बुन अंजलि पारेश्वर। इन्हें बाद भाई बोनो मनोरंजन ने ताका पूरी भरमार जिन्हें में आप हमरो का कार्यक्रम फिल्म संगीत। भाई बोनो हमारी अब तक की हिंदी मुलाकात था का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 बजे। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। इन्हें बाद शुरू था का अपनी पसंद नो कार्यक्रम आपकी फरमाइश जिन्हें आप हमरी शको का प्रभात 11 तक की बोपरानी 1 बजे मैस में। अगर आप भी अपनी फरमाइश न की तरह हम रुचा हो तो मने लकी मोकली शको फिल्म नो नाम गीत ना बोल आपनो नाम ने अपना गाम नो नाम हमारे अणो व्हाट्सएप नंबर माते। हमारो नंबर है 9460051234। तो भाई बोलो आ तो हती आपड़ा परबाती सभा में प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आपड़ा सभा की शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की।

0: आज के सुविचार।
1: सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए, जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।
1: परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, हम जब भी कार्यक्रम के माध्यम से हाजिर होते ही तो हमारी आपसे बातचीत का एक नया विषय होता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज का श्रोता साथियों हमारा विषय ही बच्चों को समय का महत्व कैसे सिखाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, हम सभी के पास दिन के एक जैसे 24 घंटे होते हैं। किसी के पास समय ज्यादा नहीं होता है और किसी के पास ना ही कम। फर्क केवल श्रोता साथियों इतना होता है कि हम उस समय का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। बच्चों की दुनिया में श्रोता साथियों समय कभी खेलते खेलते निकल जाता है, कभी मोबाइल देखते हुए, कभी दोस्तों के साथ बातें करते हुए और कभी यह सोचते हुए कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, यही छोटी सी आदत धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है। काम टालने की आदत से पढ़ाई अधूरी रह सकती है, जरूरी काम छूट सकते हैं और आखिरी समय में तनाव बढ़ सकता है। जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को समय का महत्व केवल घड़ी देखकर नहीं सिखाया जा सकता। उन्हें यह अनुभव कराना भी जरूरी है कि समय बीत जाने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जी हाँ श्रोता साथियों, इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को समय का महत्व कैसे सिखाएं। कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि बच्चों का समय है वो खेलते खेलते, कभी मोबाइल देखते हुए, कभी दोस्तों से बातें करते हुए, और कभी यह सोचने में निकल जाता है कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है और बाद में कर लूंगा काम है वो। लेकिन श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि यही छोटी सी आदत धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है। काम टालने की आदत से पढ़ाई है वो अधूरी रह सकती है, जरूरी काम छूट सकते हैं, और आखिरी समय में तनाव ही वो बढ़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को समय का महत्व केवल घड़ी देखकर नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें यह अनुभव कराना भी जरूरी है कि एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। जी हाँ श्रोता साथियों, आज के नाटक में भी एक बच्ची हर काम को बाद में करने की आदत में है, लेकिन एक छोटा सा अनुभव उसे समझाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं कहानी जो समय आज है वही सबसे कीमती है।
1: सुबह का समय, घर में स्कूल जाने की तैयारी चल रही है। ईरा आराम से बैठी जूते पहन रही है, उसकी स्कूल की कॉपी खुली है और माया उसके पास आती है।
2: अरे ईरा, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया क्या?
3: नहीं, अभी नहीं, आज शाम को कर लूंगी।
2: अच्छा, कल भी तो तुमने यही कहा था।
3: तो क्या हुआ, अभी तो समय है ना।
2: अच्छा, और गणित का अभ्यास?
3: वो भी शाम को।
2: और जो चित्र प्रतियोगिता के लिए बनाने थे वो?
3: वो भी शाम को।
2: तो आज शाम तुम्हारे पास कितने घंटे होंगे?
3: काफी होंगे।
2: यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
3: कौन सी गलतफहमी?
2: तुम समय को घंटों में देखती हो, लेकिन काम को उसकी मेहनत में नहीं देखती। तुम सोचती हो कि शाम को सब कर लूंगी, फिर शाम को थकान होगी, खेलने का मन करेगा, कोई दोस्त बुलाने आ जाएगा और फिर तुम कहोगी कल कर लूंगी।
3: अरे दीदी, आप भी ना इतना मत सोचो, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा।
2: ईरा, एक दिन में शायद फर्क न पड़े, लेकिन रोज का एक दिन मिलाकर पूरा महीना बना देता है, और यही महीना आगे चलकर साल बन जाता है।
3: मतलब आप कह रही हो कि मेरी बाद में करूंगी वाली आदत नुकसान कर सकती है?
2: बिल्कुल। समय को बचाने का मतलब घड़ी को रोकना नहीं है, समय बचाने का मतलब है जो काम जरूरी है उसे सही समय पर पूरा करना।
3: ओह, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि दिन को व्यवस्थित कैसे करूं?
2: तो आज हम एक प्रयोग करेंगे।
3: कैसा प्रयोग?
2: आज तुम पूरे दिन का हिसाब रखोगी, कब पढ़ाई करोगी, कब खेलोगी, कब आराम करोगी, कब बिना किसी जरूरत काम के समय निकालोगी। शाम को हम दोनों बैठकर देखेंगे कि तुम्हारा समय कहाँ गया।
3: अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार रहेगा।
2: और शायद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि समय कम नहीं था, बस उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ।
3: ठीक है दीदी, मैं आज पूरा हिसाब रखूंगी।
2: अच्छा तो मैडम, आज के समय का हिसाब कैसा रहा?
3: दीदी, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा।
2: क्यों?
3: मैंने सोचा था कि मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन आज जब मैंने हिसाब लिखा तो पता है क्या हुआ? मुझे ये पता चला कि मैंने लगभग एक घंटा बेवजह इधर उधर कर दिया। कभी सामान ढूंढने में समय गया, तो कभी काम शुरू करने से पहले ही बैठी रही, और कई बार बस यही सोचती रही कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद।
2: देखा, यही तो समय की असली सीख है। समय अक्सर बड़े कामों में नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों में बर्बाद होता है।
3: अब मुझे समझ आ गया, अगर मैं हर काम को आखिरी समय के लिए छोड़ूंगी तो एक दिन सारे काम मेरे सामने खड़े हो जाएंगे।
2: बिल्कुल, और तब तुम्हें लगेगा कि समय बहुत कम है।
3: हाँ, जबकि समय कम नहीं था, मैंने उसे सही जगह दिया ही नहीं।
2: बिल्कुल।
3: अब मैं दीदी रोज 3 जरूरी काम पहले तय करूंगी। पहला जरूरी काम, फिर खेल, और फिर मनोरंजन, और किसी काम को बिना वजह कल पर भी नहीं छोड़ूंगी।
2: बिल्कुल, यही आदत तुम्हें आगे ले जाएगी। रा
3: हाँ, आज मुझे एक बात समझ आ गई। समय की कद्र घड़ी देखने से नहीं, अपने काम पूरे करने से होती है।
1: बिल्कुल, और याद रखना, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए जो अच्छा काम आज किया जा सकता है उसे बिना वजह कल पर नहीं छोड़ना चाहिए।
0: श्रोता साथियों, आज की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बच्चों को समय का महत्व डांट कर नहीं बल्कि उन्हें समय का अनुभव कराकर समझाया जा सकता है। बच्चों को एक साथ बहुत सारे नियम देने के बजाय साथियों, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य बनाना सिखाएं। दिन में पढ़ाई, खेल, आराम, परिवार और मनोरंजन, हर चीज के लिए उचित समय तय करने में उनकी मदद करें। उन्हें श्रोता साथियों यह भी समझाएं कि बाद में कहने की आदत कब हमारे काम को मुश्किल बना देती है। श्रोता साथियों, समय की अच्छी आदत बचपन से बन जाए तो आगे की जिंदगी में पढ़ाई, काम और जिम्मेदारी को संभालना बहुत ही आसान हो जाता है। याद रखिए श्रोता साथियों, समय न दिखाई देता है न सुनाई देता है, लेकिन हमारे हर फैसले के साथ आगे बढ़ता रहता है। जो बच्चा समय की कीमत समझता है वह अपने आज को बेहतर बनाकर कल को मजबूत करता है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को घड़ी देखना नहीं समय का सम्मान करना सिखाएं। आज का छोटा सा काम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। इस संदेश के साथ श्रोता साथियों, हम आपसे विदा लेते हैं। समय का सम्मान कीजिए, आज को सार्थक बनाइए और अपने सपनों के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे और जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनो, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।

0: कार्यक्रम युवाओं के आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, हमारा विषय रहने वाला है मानवता और युवा को लेकर, जो कि दूसरों के लिए कुछ करने की भावना।
0: जी हाँ,
1: यानी कि श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो केवल किसी एक व्यक्ति समाज या वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है और वो है मानवता। यानी कि जिंदगी में हम सभी अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, हम अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, हमारी आर्थिक मजबूती का भी हम ध्यान रखते हैं, हमारी पहचान बनाना चाहते हैं, साथ ही हम ये चाहते हैं कि हमें हर जगह सफलता मिले।
0: बिल्कुल,
1: ये सभी हमारे जीवन के जरूरी लक्ष्य होते हैं कशिश। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए श्रोताओं कि क्या हमारी सफलता केवल हमारे लिए है या उससे किसी और के जीवन में भी थोड़ी सी खुशी उम्मीद और सुविधा आ सकती है।
0: जी हाँ।
1: और यही सवाल हमें मानवता की ओर ले जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से युवा और मानवता का रिश्ता क्या होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना जरूरी है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो पहले मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और हमारी बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं मानवता और युवाओं को लेकर, जो कि दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अगर मानवता के अर्थ को हम जाने तो देखते हैं साथियों कि मानवता का मतलब है किसी जरूरतमंद को पैसे देना नहीं, बल्कि किसी दूसरे के दर्द को समझना, उसकी परिस्थितियों का सम्मान करना, जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आना और बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना।
0: जी हाँ
1: जागृति जी, जब यही भावना हमारे युवा साथियों के भीतर पैदा होती है तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। युवा ऊर्जा, विचार, समय, तकनीक और साथ ही रचनात्मकता से समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम जैसा कि जानते हैं कि युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। युवाओं के पास ऊर्जा भी होती है, नए विचार भी होते हैं और कुछ नया करने का साहस भी होता है।
0: आज का युवा केवल अपने भविष्य का निर्माता नहीं है कशिश, बल्कि वो अपने परिवार, समुदाय और देश के भविष्य को भी दिशा दे सकता है। लेकिन श्रोता साथियों, युवा शक्ति का सही अर्थ केवल ये नहीं है कि युवा कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है।
1: बिल्कुल,
0: असली सवाल तो ये भी है कि वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल दूसरों के लिए कितना करता है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी युवा को पढ़ाई में अच्छी समझ है, वो केवल खुद अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित रह सकता है, या फिर अपने आसपास के किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा सकता है जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है।
1: बिल्कुल,
0: किसी युवा को कंप्यूटर और मोबाइल की अच्छी जानकारी है, वो केवल सोशल मीडिया चलाने तक ही सीमित रह सकता है, या फिर किसी बुजुर्ग को ऑनलाइन जरूरी काम करना सिखा सकता है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि किसी युवा को खेती की नई तकनीकों की जानकारी है तो अपने गांव के किसानों के साथ वो जानकारी साझा भी कर सकता है। किसी युवा में अच्छा संवाद करने की क्षमता है कशिश, तो वो लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, स्वच्छता का ज्ञान दे सकता है, पर्यावरण और स्वास्थ्य, सामाजिक की जिम्मेदारियों के बारे में वो जागरूक कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि श्रोता साथियों, मानवता के लिए हमेशा बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही भावना की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अब श्रोता साथियों प्रश्न ये है कि मानवता की शुरुआत होती कहाँ से है।
0: जी हाँ,
1: तो हम देखते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि समाज के लिए कुछ करने का मतलब बहुत बड़ा अभियान चलाना है। लेकिन जागृति जी, मानवता की शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि घर में किसी बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनना भी मानवता है साथियों, किसी परेशान दोस्त का साथ देना भी मानवता की निशानी है, किसी जरूरतमंद को सही रास्ता बताना भी मानवता है, किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद करना भी मानवता है, किसी सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता बनाए रखना, किसी व्यक्ति की कमजोरी या मजबूरी का मजाक न उड़ाना भी श्रोता साथियों मानवता होता है। किसी की गलती पर उसे अपमानित करने के बजाय समझाना मानवता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि मानवता केवल बड़े कामों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देती है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि दूसरों के लिए कुछ करने की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्यों होनी चाहिए उसको लेकर हम बात करें तो आज का समय हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की दौड़ में लगा हुआ है। कई बार हम अपनी परेशानियां और इच्छाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आसपास के लोगों की जरूरत को देख भी नहीं पाते।
1: जी,
0: ऐसे समय में दूसरों के लिए कुछ करने की भावना हमें एक बेहतर इंसान बनाती है श्रोताओं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल सामने वाले को ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि हमारे भीतर भी संवेदनशीलता, धैर्य, संतोष, जिम्मेदारी, ये सारी खूबियां जो है वो विकसित होती है। दूसरों की मदद करने वाला युवा समाज की वास्तविकताओं को करीब से समझता है। उसे पता चलता है कशिश कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। किसी के पास पढ़ाई के साधन है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास परिवार का सहयोग है तो किसी के पास नहीं है श्रोताओं। किसी के पास रोजगार का अवसर है तो किसी के पास नहीं है। किसी के पास अपनी बात कहने का आत्मविश्वास है तो कोई अपनी परेशानी किसी से साझा भी नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल,
0: जब युवा इन परिस्थितियों को समझता है कशिश, तो उसके भीतर सहानुभूति पैदा होती है और सहानुभूति से ही मानवता मजबूत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम हमारे युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि मानवता जो है वो कुछ कर गुजरने की भावना है।
0: जी हाँ,
1: तो इस विषय को लेकर आगे भी कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि युवा साथियों बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है, हम बात कर रहे हैं कि मानवता कुछ कर गुजरने की भावना होती है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही मानवता क्यों जरूरी है इस विषय को लेकर गीत से पहले हम बात कर पाए थे। यही अगर बात करें तो सहानुभूति मानवता की पहली सीढ़ी होती है जागृति जी।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, दूसरों की मदद करने से पहले हमें दूसरों को समझना सीखना होगा। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में तुरंत राय बना लेते हैं। कोई पढ़ाई में कमजोर है तो हम उसे आजी कह देते हैं जागृति जी। कोई चुप रहता है तो हम उसे घमंडी समझ लेते हैं। वहीं साथियों, कोई आर्थिक परेशानी में होता है तो उसकी स्थिति को उसकी गलती हम मान लेते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके पीछे कौन सी परिस्थितियां हैं। इसलिए युवा साथियों के लिए जरूरी है कि वे निर्णय देने से पहले समझने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल,
0: किसी के लिए हमारे कुछ शब्द श्रोता साथियों बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता से ज्यादा जरूरत होती है, कोई उसे ध्यान से सुने और कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
1: बिल्कुल,
0: अगर देखा जाए साथियों तो यही मानवता है।
1: बिल्कुल कशिश, और अब सवाल आता है कि युवा वास्तव में दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत बड़ा है श्रोता साथियों। शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं, डिजिटल ज्ञान साझा कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं, बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर हमारे युवा साथी करेंगे, उनके मन में जो मानवता है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि आज हम युवाओं के हाथों में एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है, वो है सोशल मीडिया। इसका इस्तेमाल केवल हम मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव के लिए भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: युवा सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैला सकते हैं, अच्छे कार्यों की जानकारी साझा कर सकते हैं और लोगों को सकारात्मक गतिविधियों से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, मानवता दिखाने के लिए कैमरा जरूरी नहीं है श्रोता साथियों। अगर हम किसी की मदद केवल इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, तो हमें अपनी भावनाओं पर विचार करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: सच्ची मदद तो वो है जिसमें सामने वाले की गरिमा बनी रहे।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों हमें मानवता को केवल आर्थिक मदद से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को रोजगार की जानकारी देना, किसी युवा को सही करियर विकल्प समझाना, किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की जानकारी देना हो श्रोता साथियों, या किसी किसान को उपयोगी जानकारी पहुँचाना हो, ये सभी मानवता के उदाहरण है। कभी कभी सही जानकारी देना भी मदद हो सकती है और कभी कभी सही व्यक्ति से जोड़ देना भी मदद हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों, कभी कभी गलत समय पर गलत सलाह देने के बजाय चुपचाप सुन लेना भी आपकी मदद हो सकती है। याद रखिए, दूसरों की मदद करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि युवा अपनी पढ़ाई या करियर को छोड़ दें।
1: जी हाँ,
0: बल्कि जागृति जी, ये एक मजबूत युवा होते हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए समाज के लिए कुछ करने की जगह बनाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने कौशल को मजबूत कीजिए, करियर के लिए मेहनत कीजिए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ समाज के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि आत्मनिर्भर युवा समाज की जिम्मेदारी से भागता नहीं है बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे अकेले कुछ करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इतिहास और समाज दोनों हमें बताते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक युवा एक बच्चे को पढ़ाता है, वो बच्चा आगे चलकर 10 बच्चों को पढ़ाता है, 10 बच्चे आगे जाकर समाज में अपना योगदान देते हैं। यानी कि श्रोताओं, एक छोटा सा प्रयास भी भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, बल्कि आप ये सोचिए कि मैं आज से शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
0: जी
1: दूसरों
0: हाँ।
1: की मदद करते समय हमें ये याद रखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारी दया का पात्र नहीं बल्कि सम्मान का अधिकारी है। यदि हम किसी की सहायता करते हैं और बदले में उसे छोटा महसूस करवाते हैं, तो हमारी मदद का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं को खास तौर पर समझना होगा कि किसी की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पहनावे, भाषा, सामाजिक स्थिति के आधार पर उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप खुद से एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिएगा।
1: बिल्कुल,
0: कि अगले 7 दिनों में आप कम से कम एक ऐसा काम करेंगे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को वास्तविक मदद मिले। श्रोता साथियों, वो काम छोटा हो सकता है, जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी जरूरतमंद को सही जानकारी देना या किसी दोस्त की परेशानी सुनना।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही किसी सार्वजनिक स्थान को साफ रखना साथियों, किसी पौधे की देखभाल करना या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करना जो खुद पर विश्वास खो रहा हो। लेकिन श्रोता साथियों, एक शर्त है, वो है कि उस काम का उद्देश्य केवल अच्छा इंसान बनना हो, दिखावा करना नहीं।
1: जी हाँ कशिश, तो हमारे युवा साथियों को आज की बातचीत से हम यही कहना चाहेंगे कि मानवता कोई बहुत कठिन या दूर की चीज नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: मानवता हमारे व्यवहार में है, हमारे शब्दों में है, हमारे निर्णयों में है, हमारे समय में है और सबसे बढ़कर हमारी भावना में है। युवा उम्र केवल अपने सपने देखने की उम्र नहीं है श्रोताओं, बल्कि अपने सपनों के साथ समाज के सपनों को समझने की उम्र भी है।
0: बिल्कुल।
1: हम डॉक्टर बने, शिक्षक बने, किसान बने, इंजीनियर बने, कलाकार बने, उद्यमी बने या किसी क्षेत्र में जाएं, अपने भीतर इंसानियत को हमेशा हमारे अंदर जीवित रखना है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि एक सफल व्यक्ति बनना अच्छी बात है, लेकिन एक सफल और संवेदनशील इंसान बनना उससे भी बड़ी उपलब्धि है।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए श्रोताओं, समाज को बदलने के लिए हमेशा बड़े पद की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी एक अच्छा विचार, एक संवेदनशील दिल और एक छोटा सा प्रयास भी काफी होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इसलिए श्रोता साथियों, अपने लिए सपने देखिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी सफलता में दूसरों के लिए थोड़ी जगह जरूर रखिए, क्योंकि जिस युवा की सफलता से केवल उसका जीवन नहीं बल्कि किसी और का जीवन भी बेहतर होता है जागृति जी, वही युवा समाज की असली ताकत बनता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी सकारात्मक सोच के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो दोस्तों विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: भाई ने बोलो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
3: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मलीने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंग्र अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
2: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने का हम संकल्प किस तरह से हमारे अंदर होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अंजलि, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। सपने हमें बताते हैं कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, लेकिन केवल सपना देख लेना पर्याप्त नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सपना तभी हकीकत बनता है जब उसके साथ मेहनत, धैर्य और उसे पूरा करने का मजबूत संकल्प जुड़ जाए। क्योंकि सपने आंखें बंद करके देखे जाते हैं श्रोताओं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आंखें खोलकर लगातार प्रयास करने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से इस विषय पर हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को क्यों ना हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि सिर्फ सपना नहीं, उसे पूरा करने का संकल्प भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने का सपना देखता है।
0: बिल्कुल,
1: कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार तो कोई अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। श्रोता साथियों, सपने हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें भविष्य की एक सुंदर तस्वीर दिखाते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन जागृति जी, केवल सपना देख लेना सफलता की गारंटी नहीं है। सपने तभी साकार होते हैं जब उनके साथ मजबूत संकल्प, निरंतर मेहनत, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास जुड़ जाए। क्योंकि सपना देखना आसान होता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना चुनौतीपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, कुछ समय तक उत्साह के साथ प्रयास भी करते हैं, लेकिन जागृति जी, थोड़ी सी कठिनाई आने पर पीछे हट जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। वे असफलताओं से सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यही दृढ़ संकल्प उन्हें सफलता के करीब ले जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि अगर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं कि आखिर सपना होता क्या है, तो श्रोता साथियों आप भी जानते हैं कि सपना क्या होना चाहिए। सपना केवल भविष्य की कोई इच्छा नहीं है, सपना तो विचार है जो हमारे भीतर कुछ बड़ा करने की हमें प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई विद्यार्थी सोचता है अंजलि कि उसे पढ़ लिख कर समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनना है, जब कोई युवा अपने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने का विचार करता है, या जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य तय करता है, तो यही सपना उसके जीवन की दिशा बन जाता है।
1: जी जी।
0: लेकिन सपना तभी सार्थक है जब हम उसके लिए कार्य करना शुरू करें। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाने का सपना देखता है श्रोताओं, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं दे पाता, तो सपना केवल कल्पना बनकर रह जाता है।
1: जी जी।
0: और इसी के विपरीत यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है, समय का सदुपयोग करता है और कठिन विषयों पर अधिक मेहनत करता है, तो उसका सपना धीरे धीरे लक्ष्य में बदलने लगता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें संकल्प की शक्ति की, तो श्रोता साथियों, संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय करना।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति मन में यह तय कर लेता है जागृति जी कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, वह अपने उद्देश्य की दिशा में प्रयास करता रहेगा।
0: जी हाँ।
1: तब संकल्प की वास्तविक शक्ति सामने आती है। संकल्प हमें केवल यह नहीं बताता कि हमें क्या पाना है, बल्कि ये भी प्रेरित करता है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सपना कहता है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन संकल्प कहता है कि मैं मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजूंगा और लगातार चलता रहूंगा।
0: बिल्कुल,
1: जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है। संसाधनों की कभी कमी हो जाती है, तो कभी समय नहीं मिल पाता, तो लोग हमारा मजाक बना लेते हैं, या पहली कोशिश में सफलता नहीं मिल सकती। ऐसे समय में संकल्प ही हमें टूटने से बचाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सपना और लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सपना हमारी इच्छा है और जबकि लक्ष्य उस इच्छा को पूरा करने की स्पष्ट योजना है।
1: जी जी।
0: श्रोताओं, कोई युवा कहता है कि वो अपने क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर बनाना चाहता है, तो ये एक सपना है, लेकिन वो ये तय करता है कि वो बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाएगा, सप्ताह में कुछ घंटे बच्चों को पढ़ाएगा और लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेगा, तो सपना लक्ष्य का रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए जीवन में केवल ये सोचना पर्याप्त नहीं है श्रोताओं कि मुझे सफल होना है, इसके साथ यह भी तय करना बहुत जरूरी है कि सफलता पाने के लिए आज से कौन सा कदम उठाया जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं मिलती, उनके लिए छोटे छोटे प्रयासों की लंबी यात्रा होती है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति श्रोता साथियों, एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता, वह एक एक कदम आगे बढ़ता है। उसी प्रकार जीवन के बड़े सपनों को भी छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना चाहिए। यदि विद्यार्थी को जागृति जी एक वर्ष में कोई परीक्षा पास करनी है, तो उसे पूरे वर्ष का अध्ययन एक ही दिन में नहीं करना चाहिए। वह रोज कुछ घंटे पढ़ सकता है, विषयों के अनुसार समय बांट सकता है और नियमित रूप से अपनी प्रगति देख सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसी तरह कोई व्यक्ति यदि कोई कौशल सीखना चाहता है, तो रोज थोड़ा समय देकर धीरे धीरे उसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि श्रोता साथियों, छोटे कदम भले ही छोटे दिखाई दें, लेकिन निरंतरता के साथ यही कदम बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सपने को लेकर बात कर रहे हैं, तो आगे जानेंगे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, असफलता रास्ते का अंत नहीं है, साथ ही हमारे श्रोता साथियों को हम अनुशासन और समय के महत्व के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम जानते हैं श्रोता साथियों कि हम भोजन के बिना कुछ दिन, पानी के बिना कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। फिर भी अक्सर अपने आसपास की हवा, वातावरण की स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान हम नहीं देते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, धुआं, धूल और गंदगी आज हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण केवल सुविधा ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आज के कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण का क्या महत्व है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा महत्व है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना हम अपने दैनिक कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते।
1: जी जी।
0: अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल पौष्टिक भोजन और व्यायाम की ही आवश्यकता नहीं होती है साथियों, बल्कि हमें स्वच्छ हवा और साफ सुथरा वातावरण भी चाहिए। श्रोता साथियों, हम जो हवा सांस के रूप में अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यक चीजों में से एक है।
1: बिल्कुल।
0: भोजन के बिना हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था, लेकिन श्रोता साथियों, हवा के बिना कुछ मिनट के लिए भी हम जीवित नहीं रह सकते।
1: बिल्कुल मनीषा, आप यही बात करें श्रोता साथियों से, तो श्रोता साथियों, हवा प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। हम दिन रात सांस लेते हैं और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों, जब हवा स्वच्छ होती है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है और हमारे जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हवा में धूल, धुआं, जहरीली गैसें और प्रदूषक तत्व बढ़ जाते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। दूषित हवा के कारण सांस संबंधित रोग, अस्थमा, एलर्जी, खांसी और फेफड़ों की बीमारी बढ़ने लगती है।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वच्छ हवा बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनका शरीर प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें साफ वातावरण के अर्थ की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि साफ वातावरण का अर्थ केवल सड़क पर कचरा नहीं होना नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: इसमें हमारे घर, स्कूल, कार्यालय, सड़कें, सार्वजनिक स्थल, जल स्रोत और आसपास की प्राकृतिक जगहों की भी स्वच्छता शामिल है। श्रोता साथियों, साफ वातावरण में स्वच्छ हवा, साफ पानी, उचित कचरा प्रबंधन, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त पेड़ पौधे और प्रदूषण का कम होना भी आवश्यक है। जब हमारा वातावरण साफ रहता है साथियों, तो बीमारियों के फैलने की संभावना कम होती है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारा जीवन है वो भी स्वस्थ और सुखद रहता है।
1: जी हाँ मनीषा, बच्चे देश का भविष्य है। यदि उन्हें बचपन से ही स्वच्छ वातावरण मिले तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। खुले और स्वच्छ वातावरण में खेलने वाले बच्चे अधिक सक्रिय रहते हैं, उन्हें सांस संबंधित समस्याएं कम होती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। यदि बच्चे प्रदूषित वातावरण में बड़े होते हैं श्रोता साथियों, तो उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण का क्या महत्व है, इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, तो ये बातें हमारे आगे भी श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से स्वच्छ हवा अगर रहेगी और स्वच्छ वातावरण रहेगा तो हम स्वस्थ रह सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, पेड़ पौधे प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक हैं। वे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: हाँ।
0: यही कारण है कि जहाँ अधिक पेड़ होते हैं वहाँ की हवा अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ होती है। पेड़ तापमान को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। कहना चाहेंगे कि गांवों और शहरों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके हम स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक व्यक्ति यदि मनीषा अपने जीवन में कुछ पेड़ भी लगाता है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा योगदान देता है। यही बात करें कि प्रदूषण के क्या कारण है तो हम देख रहे हैं कि आजकल वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, कारखानों का जो उत्सर्जन है, प्लास्टिक कचरे को खुले में जला दिया जाता है, पेड़ों की कटाई, रासायनिक पदार्थों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, खुले में कचरा फेंकना, धूल और निर्माण कार्य, ये सभी कारण है हवा और वातावरण को प्रदूषित करते हैं, मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता को लेकर उतनी ही आवश्यकता है जितनी शहरों में है। गांव में यदि नालियों की सफाई नियमित हो, कचरे का उचित निपटान हो, पेड़ पौधों की देखभाल की जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे कि स्वच्छ गांव न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर होते हैं बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देते हैं। इसलिए साफ सुथरा वातावरण लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देता है और सामुदायिक जीवन को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि प्रदूषित हवा है उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि प्रदूषित हवा का अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों, बुजुर्गों और पहले से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं वालों लोगों को विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रदूषित हवा से श्रोता साथियों, आंखों में जलन, नाक और गले में परेशानी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और कई सारी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। लगातार खराब हवा के संपर्क में रहने से श्रोता साथियों, फेफड़ों और हृदय संबंधी स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए वायु प्रदूषण को केवल पर्यावरण की समस्या मानना उचित नहीं है साथियों, यह एक संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित भी समस्या है।
0: बिल्कुल मनीषा, स्वच्छ हवा और साफ वातावरण के लिए हर व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठा सकता है। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, कचरा इधर उधर न फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वाहन का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें, इसी के साथ कचरे को खुले में न चलाएं, जल स्रोतों को दूषित होने से बचाएं, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं और सामुदायिक स्वच्छता अभियान में भाग लें। श्रोता साथियों, छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सरकार और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार अलग अलग स्वच्छता अभियानों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों और प्रदूषण नियंत्रण योजना के माध्यम से प्रयास करती है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है मनीषा। जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक स्थायी परिवर्तन संभव नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य मानना चाहिए। श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन की नींव स्वच्छ हवा और साफ वातावरण पर टिकी हुई है।
1: जी हाँ।
0: यदि हवा प्रदूषित होगी तो वातावरण गंदा होगा तो हम आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी के कारणों को रोकने पर ध्यान देना होगा। इसलिए हमें अपने घर, गांव, स्कूल, कार्यस्थल, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, प्रदूषण कम करना है और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ सुरक्षित पर्यावरण देना है।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए श्रोता साथियों, स्वच्छ हवा केवल प्रकृति का उपहार नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जब वातावरण स्वच्छ होगा तभी समाज स्वस्थ होगा और जब समाज स्वस्थ होगा तभी देश प्रगति करेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा बड़ी कार्यों की जरूरत नहीं होती है, हमारी छोटी छोटी आदतें भी श्रोता साथियों बड़ा बदलाव ला सकती है। एक व्यक्ति कचरा सड़क पर न डालने का निर्णय लेता है, दूसरा पेड़ लगाता है, तीसरा प्लास्टिक का उपयोग कम करता है और चौथा श्रोता साथियों जागरूकता फैलाता है। तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब लाखों लोग ऐसी छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में बड़ा परिवर्तन आता है। साथियों, कहना चाहेंगे कि प्रकृति केवल वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी या संपत्ति नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ हवा, साफ पानी, हरियाली और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि श्रोता साथियों आज प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगी और पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगी, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि भविष्य में यह समस्या है वो और भी बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमें अपने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से हम ये जान पाए

0: कि किस तरीके से स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण का हमारे जीवन में महत्व है और इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है।
1: जी
0: आशा
1: हाँ।
0: करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को एक और प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवाना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय रहने वाला है कि हम अपने मन के मालिक हैं या आदतों के।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो रोज करते हैं वह वास्तव में हमारी अपनी पसंद होती है या हमारी आदतों का परिणाम होता है? सुबह उठते ही मोबाइल देखना, बिना सोचे चाय पीना, किसी बात पर तुरंत गुस्सा हो जाना, बार बार टालम टोल करना या फिर नियमित व्यायाम करना, ये सब केवल काम नहीं है कशिश, बल्कि हमारी आदतों का हिस्सा।

0: हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हमें लगता है कि हम अपने मन के अनुसार निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आदतें हमारे फैसलों को प्रभावित कर रही होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम यहाँ पर एक प्यारा सा गीत पहले सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय से तो रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने मन के मालिक हैं या आदतों के।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी, हम मनुष्यों का जीवन केवल हमारे विचारों और इच्छाओं से नहीं चलता, बल्कि हमारी आदतें भी उसके जीवन का एक कह सकते हैं कि दिशा तय करती है।
1: जी जी,
0: हम रोज कई काम बिना ज्यादा सोचे करते हैं साथियों, जैसे कि सुबह उठना, मोबाइल देखना, समय पर खाना खाना, किसी से बातचीत करना, काम को टालना, समय का सही उपयोग करना या बेवजह घंटों किसी काम में लगे रहना।
1: बिल्कुल,
0: इनमें से श्रोता साथियों बहुत सी चीजें हमारी आदतों का हिस्सा बन चुकी होती है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या हम वास्तव में अपने मन के मालिक हैं या हमारी आदतें ही हमें अपने अनुसार चलाती रहती हैं।
1: बिल्कुल कशिश,
0: ये सवाल अंजलि जी केवल व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और हमारी आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत सी बार हम हमारे मन के अनुसार काम न होने की चीजों को लेकर बोलते रहते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि हम हमारे मन के मालिक नहीं है, हम हमारी आदतों के मालिक है। आदतें हमारी ऐसी है जो हमें जिस तरीके से सुकून देती है, हम उसके पीछे भागते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमें लेट उठना पसंद है, नींद आ रही है, तो ये हमारी आदत है, हमारा मन नहीं है। मन को अगर हम पूछेंगे कि ये हमारी चीज क्या सही है, तो अंदर से आवाज आएगी कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी आदत हमें इन सारी चीजों को करने से रोकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें हमारी आदतों को सुधार कर मन का मालिक बनना होगा।
0: जी हाँ,
1: जब हम मन के मालिक बनते हैं तो हम हमारे जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको अच्छे से दूर कर पाते हैं, समाधान सोच पाते हैं और नई दिशा में अपना कदम भी बढ़ा पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि हमारी जो कुछ ऐसी आदतें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमारा व्यवहार जो है वो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और फिर अच्छी आदतें हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि जो गलत आदतें होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं अंजलि जी पीछे खींचती हैं।
1: जी जी,
0: अगर बात करें कि हमारा मन क्या चाहता है, तो श्रोता साथियों, मन तो हमारा काफी चंचल है। एक पल में वह कुछ करने का फैसला करता है तो दूसरे ही पल में किसी दूसरी चीज की ओर आकर्षित हो जाता है। अंजलि जी, विद्यार्थी पढ़ाई करने बैठता है लेकिन मोबाइल देखने का मन नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने का निर्णय लेता है लेकिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता।
1: जी जी,
0: कोई व्यक्ति अपना जरूरी काम समय पर पूरा करना चाहता है लेकिन उसे टालने की आदत उसके उसमें बीच में आ जाती है। इससे श्रोता साथियों ये पता चलता है कि मन में इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हर इच्छा को पूरा करना हमारे लिए सही नहीं होता। समझदारी इसी में है साथियों कि हम अपने मन की हर इच्छा के पीछे न भागे, बल्कि ये तय करने की कोशिश करें कि हमारे लिए सही क्या है और क्या गलत है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा अधिकांश व्यवहार आदतों से संचालित होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: हम दिन भर में जो अनेक छोटे छोटे कार्य करते हैं, इनमें से कई कार्य बिना ज्यादा सोच विचार के करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा मन कमजोर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारा मस्तिष्क बार बार किए जाने वाले कार्यों को आसान बनाने के लिए उन्हें आदत में बदल देता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा जाता है कि पहले हम आदतों को बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती है।
0: जी हाँ,
1: ये बात श्रोता साथियों बिल्कुल सच है। यदि कोई व्यक्ति रोज समय पर उठता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, तो कुछ समय बाद ये काम उनकी आदत बन जाते हैं, फिर उसे इन कामों के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति आलस्य, नशा, समय की बर्बादी या नकारात्मक सोच की आदत अपना लेता है, तो वह भी उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है, यह हमें सोचने, समझने, निर्णय लेने और जीवन की दिशा तय करने की क्षमता देता है।
0: जी जी,
1: लेकिन दोस्तों, मन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कभी यह उत्साहित होता है, कभी निराश, कभी डरता है तो कभी सपने देखता है। कैसे ऐसे में कशिश, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हमारी जो आदतें ही है वो स्थायी व्यवस्था का काम करती है।
0: बिल्कुल,
1: अच्छी आदतें हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती हैं और बुरी आदतें हमें धीरे धीरे पीछे खींच ले जाती हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से बातचीत कर ही रहे हैं कि हमें ये जानना होगा कि हम मन के मालिक है या मन हमारा मालिक है या फिर हम आदतों के गुलाम हैं, तो ये सभी बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हमारा अधिकांश व्यवहार आदतों से संचालित होता है। हम दिन भर में जो अनेक छोटे छोटे कार्य करते हैं उनमें से कई बार बिना ज्यादा सोच समझ के विचार करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा मन कमजोर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारा मस्तिष्क बार बार किए जाने वाले कार्यों को आसान बनाने के लिए उन्हें आदत में बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि आदतें इतनी प्रभावशाली हैं तो क्या हम अपने मन के मालिक नहीं हैं?
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कशिश, इसका उत्तर यह है कि हम अपने मन के मालिक भी हैं और अपनी आदतों के भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना होता है। यदि हम सचेत होकर अपने व्यवहार को देखें, अपनी कमजोरियों को समझें और बदलाव का निर्णय लें तो हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे नया व्यवहार भी आदत बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को हर समय मोबाइल चलाने की आदत है कशिश, तो वह तय समय कर सकता है और दिन में कुछ समय मोबाइल से दूर रह पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जो आदतें हैं वो अचानक नहीं बनती। श्रोता साथियों, किसी काम को बार बार करने से वह धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में हमें किसी काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लगातार दोहराने पर वही काम सहज लगने लगता है। उदाहरण के लिए देखिए श्रोता साथियों, कि यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह एक निश्चित समय पर उठ रहा है तो कुछ समय हम देखेंगे कि शरीर और मन उस समय जागने के लिए उसका शरीर आदी हो जाएगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति रात को देर तक मोबाइल चलाता है तो धीरे धीरे उसे देर रात तक जागने की आदत हो सकती है। यानी कि श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि हम अपनी आदतों को तो बनाते हैं, लेकिन एक समय के बाद वही आदतें हमारे व्यवहार को प्रभावित करने लगती हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है साथियों, कि हम जो काम आज बार बार कर रहे हैं वही कल हमारी आदत बन सकता है। यही अगर बात करें कि अच्छी आदतें जीवन को मजबूत कैसे बनाती है श्रोता साथियों, तो अच्छी आदतें व्यक्ति को अनुशासन और आत्मविश्वास बनाती है। समय पर उठना, अपने काम को समय पर पूरा करना, साफ सफाई रखना, नियमित पढ़ाई करना, पर्याप्त आराम करना, परिवार के साथ समय बिताना, दूसरों का सम्मान करना अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना, ये सभी आदतें जीवन को बेहतर बना सकती है।
0: जी हाँ,
1: एक व्यक्ति यदि रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है तो लंबे समय में उसका बहुत बड़ा परिणाम उसे देखने को मिलेगा। सफलता श्रोता साथियों केवल किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलेगी, लगातार किए गए छोटे प्रयास ही भविष्य में बड़ी उपलब्धियों का आधार बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए अंजलि जी, कि हमारी रोज की आदतें हमें उस जीवन की ओर ले जा रही हैं जिसे हम वास्तव में चाहते हैं या नहीं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि शुरू में हमें उन सारी चीजों से बेचैनी होगी, लेकिन लगातार प्रयास से नई आदत विकसित हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी प्रकार दोस्तों, गुस्सा करने वाला व्यक्ति धैर्य का अभ्यास कर सकता है और आलसी व्यक्ति समय प्रबंधन सीख सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे समाज में भी आदतों का बड़ा महत्व है।
1: जी।
0: परिवार, विद्यालय और समुदाय व्यक्ति की आदतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अपने माता पिता और आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं। यदि घर में अनुशासन, सम्मान, ईमानदारी और सहयोग का वातावरण होगा तो बच्चों में भी यही गुण विकसित होंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छी आदतों का निर्माण आवश्यक है।
1: जी
0: आज
1: हाँ।
0: के समय में कई ऐसी आदतें तेजी से बढ़ रही हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना, सोशल मीडिया की लत, देर रात तक जागना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनावपूर्ण जीवन शैली जैसी आदतें स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए चुनौती बन रही है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में हमें अपने मन को जागरूक रखना होगा और स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर रहे हैं या आदतें हमें नियंत्रित कर रही है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि कशिश, जीवन में सफलता पाने वाले अधिकांश लोगों की एक विशेषता होती है, उनकी अच्छी आदतें। वे समय का सम्मान करते हैं, निरंतर सीखते हैं, अनुशासित रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते।
1: बिल्कुल,
0: उनकी सफलता केवल श्रोता साथियों प्रतिभा का परिणाम नहीं होती बल्कि वर्षों तक विकसित की गई सकारात्मक आदतों का परिणाम होती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए हमें अपने जीवन की आदतों का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही है, क्योंकि जो आदतें हमारे विकास में बाधा बन रही हैं उन्हें छोड़ने का साहस और जो आदतें हमें बेहतर इंसान बनाती है उन्हें अपनाने का हमें संकल्प लेना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों कह सकते हैं कि गलत आदतों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे शुरुआत में तो छोटे दिखाई देती है, जिस कारण अंजलि जी व्यक्ति सोचता है कि आज थोड़ा समय मोबाइल पर बिताने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आज काम अगर टाल दिया तो क्या हो जाएगा, आज अगर देर रात से सो जाऊंगा तो क्या ही परेशानी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब यही व्यवहार रोज रोज होने लगे तो ये हमारी आदत बन जाता है। फिर होता ये है कि हम कई बार चाहते हुए भी इस आदत को बदल नहीं पाते। हमें पता होता है साथियों कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं।
0: जी हाँ कशिश, ये कहना उचित होगा कि मन और आदतें एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि जीवन की यात्रा के दो महत्वपूर्ण साथी हैं। मन दिशा देता है और आदतें उस दिशा में चलने की शक्ति प्रदान करती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि मन जागरूक और दृढ़ हो तो वह किसी भी बुरी आदत को बदल सकता है, लेकिन यदि मन लापरवाह हो जाए तो आदतें धीरे धीरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है।
1: इसलिए
0: आवश्यकता है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से मजबूत बनाएं, ऐसी आदतों का निर्माण करें जो हमारे व्यक्तित्व परिवार और समाज को बेहतर बनाए। याद रखिए कि हमारा भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों से बनता है। जब हम अपनी आदतों को सही दिशा देते हैं तब वास्तव में हम अपने मन के सच्चे मालिक बन जाते हैं और जीवन को सफलता संतुलन और आत्मविश्वास के साथ जी पाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है आगे ये बातें ऐसे ही और भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं श्रोता साथियों के साथ एक और गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातें बहुत अच्छी चल रही थी गीत से पहले भी, अब यही आपको बताना चाहेंगे कि मन जो होता है वो हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं का एक संसार होता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, मन कभी हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है तो कभी आकर्षणों की ओर खींचता है। दूसरी ओर अंजलि जी, आदत किसी काम को बार बार करने से बना हुआ व्यवहार होती है, जो काम को हर बार बार बार करने और वह धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में श्रोता साथियों, हम आदत बनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आदतें हमें बनाने लगती हैं। जैसे कि एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है। कुछ समय बाद वही काम बिना अधिक सोचे होने लगता है। यही आदत की शक्ति है श्रोता साथियों। अच्छी आदतें जीवन को सरल बनाती है, जबकि बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी स्वतंत्रता को कम कर सकती हैं।
1: बिल्कुल कशिश, ये कहना उचित होगा कि मन और आदतें एक दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा के दो महत्वपूर्ण साथी है। मन दिशा देता है और आदतें उस दिशा में चलने की शक्ति प्रदान करती है। यदि मन जागरूक और दृढ़ हो तो वह किसी भी बुरी आदत को बदल सकता है। लेकिन कशिश, यदि मन लापरवाह हो जाए तो आदतें धीरे धीरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से मजबूत बनाएं और ऐसी आदतों का निर्माण करें जो हमारे व्यक्तित्व, परिवार और समाज को बेहतर बनाए। याद रखिए दोस्तों, हमारा भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों से बनता है।
0: बिल्कुल।
1: जब कशिश हम अपनी आदतों को सही दिशा देते हैं, तब वास्तव में हम अपने मन के सच्चे मालिक बन जाते हैं और जीवन को सफल, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ जी पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जो मन है वो हमें कई दिशाओं में ले जाता है। जैसे कि यदि हम अपने मन के मालिक हैं तो फिर क्रोध आने पर हम तुरंत क्रोधित क्यों जाते हैं साथियों?
1: बिल्कुल।
0: कोई हमारी आलोचना करे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया क्यों दे देते हैं? मोबाइल की घंटी या सूचना आते ही हमारा हाथ अपने आप ही फोन की ओर क्यों चला जाता है? दोस्तों, इन सभी चीजों का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम ही है, बल्कि वास्तविकता ये है कि हमारे भीतर दोनों शक्तियां मौजूद हैं। एक ओर इच्छाएं हैं और आदतें हैं, दूसरी ओर विवेक और आत्मनियंत्रण भी है। जैसे कि अंजलि जी, मन कहता है कि अभी काम कर लो, तो विवेक कहता है कि तुम्हारा काम अभी बाकी है।
1: जी जी।
0: मन कहता है कि क्रोध में जवाब दे दो, लेकिन विवेक कहता है कि थोड़ा रुक जाओ और धैर्य रखो। मन कहता है कि आज व्यायाम मत करो, तो विवेक कहता है कि स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन दोनों के बीच होने वाला संघर्ष ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हम देखते हैं कि आदतें बहुत शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे हमारे व्यवहार को स्वतः ही संचालित करने लगती हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम कई काम बिना सोचकर कर लेते हैं। इसी कारण से दोस्तों, किसी पुरानी आदत को बदलना आसान नहीं होता।
1: जी हाँ कशिश, अब सवाल यह नहीं है कि हम मन के मालिक हैं या आदतों के, बल्कि असली सवाल यह है कि हम अपने जीवन की बागडोर किसके हाथ में देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: मन को परिस्थितियां प्रभावित कर सकती हैं, आदतें हमें एक निश्चित रास्ते पर ले जा सकती हैं, लेकिन अंतिम चुनाव की शक्ति हमारे

0: अधिकतर मौजूद रहती है।
1: जी हाँ,
0: कई बार हम अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार मान लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझसे ये आदत नहीं छूट सकती।
1: बिल्कुल,
0: मैं गुस्सा जल्दी करता हूँ, मुझसे समय पर काम नहीं होता। लेकिन ऐसी बातें हमें अपनी जिम्मेदारी से दूर कर देती हैं। किसी आदत का लंबे समय से हमारे साथ होना यह साबित नहीं करता कि उसे बदलना नहीं जा सकता। बदलाव की शुरुआत उस क्षण से होती है जब इंसान अपने व्यवहार को सही ठहराने के बजाय उसे ईमानदारी से देखना शुरू कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: अपने मन का मालिक बनने का अर्थ यह नहीं है श्रोता साथियों कि हमारे मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। मन में डर भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, निराशा भी होगी और कभी कभी किसी काम को करने का मन भी नहीं करेगा।
1: जी हाँ।
0: मालिक होने का अर्थ है विचार आने के बाद हम क्या करते हैं इसका निर्णय स्वयं लेना। गुस्सा आया लेकिन अपने शब्द जो हैं उन्हें हमें संभाल कर रखने की जरूरत है। आलस आया लेकिन हमें जरूरी काम पूरा करना है। निराशा आई फिर भी हमें कोशिश जारी रखनी है। यही आत्मनियंत्रण है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे निर्णयों को महत्व देना शुरू कर दें क्योंकि एक दिन में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज एक छोटा सा सुधार कशिश कुछ महीनों बाद बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: आज इस 10 मिनट पढ़ना, कल थोड़ा समय बचाना, किसी से सम्मान पूर्वक बात करना, भोजन व्यर्थ न करना, शरीर को सक्रिय रखना, समय पर सोना और सुबह अपने दिन की योजना बनाना, ये छोटे कदम है लेकिन हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं।
1: जी हाँ।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आदत बदलने के लिए खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है। अपनी कमजोरी को पहचानना हार नहीं बल्कि सुधार की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी व्यक्ति को अपनी कोई आदत पसंद नहीं है तो उसे खुद को दोष देने के बजाय यह सोचना चाहिए कि मैं इसे धीरे धीरे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यही सोच परिवर्तन को आसान बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने बच्चों को भी यही सीख दे सकते हैं कि अनुशासन डर से नहीं समझ से आता है। उन्हें हर गलती पर डांटने की बजाय यह समझाना चाहिए कि अगर व्यवहार को सुधारा जा सकता है, क्योंकि जिस बच्चे को अपने निर्णय लेने कि गलती जो चीजें हैं वो सिखाई जाती है तो दोबारा वो उसका प्रयास करने का जो अवसर है उसे नहीं मिलता और वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन जाता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, अगर इस बात को हम छोटी सी कहानी के माध्यम से समझे तो दोस्तों ये कहानी है कि रिमोट किसके हाथ में है। श्रोता साथियों, एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। अंजलि जी, आरव पढ़ाई में काफी अच्छा था और उसके सपने भी काफी बड़े थे।
0: बिल्कुल,
1: वह हमेशा कहता था कि एक दिन वह अपने लिए कुछ अच्छा जरूर करेगा। लेकिन श्रोता साथियों, उसकी एक आदत थी, वह हर जरूरी काम को टाल देता था। सुबह अलार्म जब बजता था तो वह कहता था बस 5 मिनट और। पढ़ाई करने बैठता तो सोचता पहले थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ। काम करने का समय आता तो कहता अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। श्रोता साथियों, धीरे धीरे उसका बाद में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शब्द बन गया। एक दिन आरव के स्कूल में एक जरूरी प्रतियोगिता की घोषणा हुई थी। शिक्षक ने कहा जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उनके पास आगे बढ़ने का अच्छा अवसर होगा। आरव बहुत उत्साहित हुआ। उसने उस दिन तय कर लिया अंजलि जी कि वो पूरी मेहनत करेगा।
0: बिल्कुल,
1: उसने अपनी किताबें निकाली, कॉपी खोली और पढ़ने बैठ गया। तभी श्रोता साथियों, मोबाइल पर एक संदेश आया। आरव ने मोबाइल उठाया और सोचा कि बस 2 मिनट देख लेता हूँ। 2 मिनट का 20 मिनट हो गए, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने सोचा श्रोता साथियों कि चलो अब पढ़ लेता हूँ। लेकिन तभी उसे एक वीडियो दिखाई दिया। उसने फिर सोचा कि ये वाला भी देख लेता हूँ। फिर एक वीडियो से दूसरा और दूसरे से तीसरा। कुछ देर बाद माँ ने आवाज लगाई, आरव बेटा खाना तैयार है। आरव ने घड़ी देखी तो वो चौंक गया कि मोबाइल चलाते चलाते काफी समय बीत चुका था। उसने खुद से कहा अंजलि जी कोई बात नहीं, रात में पढ़ लूंगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन रात को उसे नींद आने लगी। फिर उसने सोचा कल से पक्का पढ़ूंगा। अगले दिन भी यही हुआ। कुछ दिन बाद श्रोता साथियों, प्रतियोगिता का दिन आ गया। आरव के पास तैयारी के लिए समय नहीं बचा था। जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था।
0: जी जी,
1: और ये देखकर आरव बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती उसने कहाँ करी। वह अपनी शिक्षक के पास गया और बोला, सर मैं जितना चाहता था लेकिन मैंने कोशिश भी की थी, फिर भी मैं असफल हो गया। शिक्षक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने सच में कोशिश की थी आरव? आरव ने कहा, जी सर। शिक्षक ने फिर पूछा, जब पढ़ने का समय था तब तुम क्या करते थे? आरव चुप हो गया। शिक्षक ने कहा, अंजलि जी कि आरव, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम में क्षमता नहीं है, समस्या तो ये है कि तुम्हारे फैसले तुम्हारी आदतें लेने लगी है। आरव ने ध्यान से उनकी बात सुनी। शिक्षक ने श्रोता साथियों मेज पर रखा एक रिमोट उठाया और बोला, मान लो ये तुम्हारे जीवन का रिमोट है, अगर रिमोट तुम्हारे हाथ में है तो तुम तय कर सकते हो कि कब क्या करना है, लेकिन अगर रिमोट किसी और के हाथ में चला जाए तो वह तुम्हें अपनी इच्छा से चलाएगा। अंजलि जी ऐसे बात कहते हुए शिक्षक ने फिर से पूछा कि बताओ तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसके हाथ में है। आरव कुछ देर चुप रहा और फिर उसने सोचा, फिर ध्यान से बोला कि शायद मेरे हाथों में ही होना चाहिए। शिक्षक मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारे लिए यही समझना जरूरी है। उस दिन आरव ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया साथियों।
0: जी जी।
1: उसने कोई बहुत बड़ा संकल्प नहीं लिया, उसने केवल छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। सुबह अलार्म बजा तो उसने तुरंत उठने की कोशिश की, पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रख दिया, काम को बाद में कहने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके उसी समय पूरा करने लगा। पहले कुछ दिन उससे बहुत मुश्किल हुई, कई बार मन ने भी कहा कि आज रहने दे, लेकिन उसने खुद से कहा कि मन की हर बात मानना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे उसकी नई आदतें बनने लगी। कुछ महीनों बाद वही आरव जो हर काम टालता था अंजलि जी, अपने हर काम को समय पर पूरा करने लगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे देखकर कहा, अब बताओ बेटा तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसके हाथ में है। और आरव मुस्कुराकर बोला, अब रिमोट भी मेरे हाथ में है सर। और यही श्रोता साथियों इस कहानी का सबसे बड़ी सीख थी। हमारी आदतें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अच्छी आदतें हमें आगे बढ़ाती है और गलत आदतें हमें पीछे रोक सकती है साथियों। लेकिन कोई भी आदत कभी हमसे बड़ी नहीं होती। अगर हम जागरूक होकर अंजलि जी कोशिश करें तो अपनी आदतों को हम बदल सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, हमारे गांव, परिवार और समाज की तस्वीर भी व्यक्तियों की आदतों से ही बनती है। यदि लोग स्वच्छता को अपनी आदत बनाए तो गांव साफ रहेगा। यदि लोग पानी बचाने को अपनी जिम्मेदारी समझे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रहेगा। यदि लोग एक दूसरे की मदद करने की आदत डाले तो समुदाय मजबूत होगा।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि हमारी व्यक्तिगत आदत का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज तक पहुंचता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए आज अपने आप से एक छोटा सा सवाल जरूर करिएगा श्रोता साथियों कि मेरी कौन सी आदत मुझे मजबूत बना रही है और कौन सी आदत मेरी क्षमता को रोक रही है। उत्तर किसी दूसरे व्यक्ति से मत मांगिए, कुछ समय शांत बैठकर अपने व्यवहार को देखिए। हो सकता है आपको अपने भीतर ऐसी ताकत दिखाई दे जिसे आपने लंबे समय से पहचानना ही नहीं था। याद रखिए कि जिंदगी हमें हर सुबह एक नया अवसर देती है। बीते हुए व्यवहार को बदलना हमेशा संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है।
1: जी हाँ अंजलि जी।
0: हमारी आदतें हमारा परिचय बन सकती है लेकिन वे हमारी नियति नहीं है। हम उसे पहचान सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को नया रूप दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आज से खुद से एक छोटा सा अधिकार जताइए, जो आदत आपके विकास को रोकती है उसे चुनौती दीजिए, जो आदत आपको बेहतर बनाती है उसे मजबूत कीजिए और जो निर्णय आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है उसे टालिए मत, क्योंकि अंत में जिंदगी यह नहीं पूछेगी कि आपके पास कितनी अच्छी परिस्थितियां थी, और यह दिखाएगी कि आपने अपनी परिस्थितियों, अपने विचारों और अपने व्यवहार को किस तरह आकार दिया।
1: बिल्कुल।
0: अपने मन को समझिए, अपनी आदत को पहचानिए, अपने फैसलों की जिम्मेदारी स्वयं उठाइए। यही आत्मनियंत्रण है, यही आत्मविकास है और यही अपने जीवन का सच्चा मालिक बनने की शुरुआत है।
1: बिल्कुल।
0: इस तरीके से कशिश, आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों से ये जाना कि हम अपने मन के मालिक हैं या आदतों के। इन दोनों ही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उन बातों का मालिक बनना है जो हमारे जीवन को सुधारेंगी, जो हमारे जीवन में बदलाव लाएंगी और सफलता की ओर हमें ले जाएंगी।
1: जी हाँ।
0: बातें ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाते जाते सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे।
1: जी हाँ।
0: और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 94140802643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। श्रोता साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं तो आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है श्रोता साथियों, आपको लिखना है व्हाट्सएप पर SMS, फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहां का आपको नाम लिखना है और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। नंबर फिर से बताना चाहूँगी साथियों, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय, सुझाव और

0: श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश अभी हमने सुनी। गीत के बोल थे, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ओम शांति ओम फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत था साथियों। इसी बीच बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है प्रतापपुर से। फिल्म का नाम है रिफ्यूज़। गीत के बोल हैं, पंछी नदियाँ पवन के झोंके। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, नाम बताना चाहूंगी। प्रतापपुर से जुड़ रहे शतम मीणा, शिवम, संजीव, कमलेश, रोहित जयपुरिया जी, वजेंद्र कुमार, अरुण, गणेश लाल जी, जसवंत, संजय, अखिलेश जी, हेमराज मीणा, चरण सिंह, श्याम प्रसाद, सत्येंद्र कुमार जी। इसी बीच हमारे साथी घाटोल से भी जुड़ रहे हैं पुष्पा कुंवर, हेमंत टेलर, आशाराम, रमेश लाल, प्यारे लाल, श्याम लाल, घनश्याम जी, लाला राम जी, राहुल जसवंत जी और मेघराज मीणा, कपिल शर्मा जी। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं और भी, बड़ोदिया से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे, आकाश सरोदे, हेमंत नामदेव, विपिन शर्मा, हरेंद्र विकास, दलपत, श्यामलाल, रामलाल, पंकज, राहुल शर्मा जी, मेघराज मीणा जी। इसी बीच मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बांसवाड़ा से ही गणेश लाल जी, रामेश्वरम, अवधेश सुंदरलाल, दीपक कुमार, अनुप चौहान, मेघराज मीणा जी, वीरेश चौहान, विकास हंसराज, मिथिलेश, वीरेंद्र, देवेंद्र कटारा जी। सियापुर से जुड़ना चाह रहे हैं राधेलाल जी, संदीप चौहान, गणेश लाल, राजकुमार, नरेश चौहान, मुकेश शर्मा, महेंद्र, इमरत सरदाब जी, वीरेंद्र जयचांद, शैलेंद्र कुमार, सत्यम कुमार, प्राणी कुमारी जी, सुरेंद्र मीणा, नवेंद्र प्रजापत और अभिनव दयाल शर्मा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, पंछी नदियां पवन के झोंके। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था रिफ्यूज फिल्म का, पंछी नदियां पवन के झोंके, इसके गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी साथियों हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, गीत के बोल हैं घर से निकलते ही। इस प्यारे से गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने, और फरमाइश करता हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं धौलपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अनरा इजाद, आजाद तबस्सुम जी। तलवाड़ा से हैं अनूप चौहान, दीपक कुमार, सुंदरलाल, अवधेश, रामेश्वर, गणेशलाल, संदीप चौहान जी, मेघराज मीणा जी और भी दोस्त इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे। सुरपुर से राधेलाल, सीताराम, ओमकार रावत, हनुमंत जी, मनोहर बंटी प्रजापत, रमेश प्रसाद, हविशंकर गुप्ता जी, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, पन्नालाल जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। गंजद्वारा से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अजरा तबस्सुम जी, शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। सियापुर से जुड़ रहे हरेंद्र कुमार, दयाराम प्रजापति, हरिशंकर प्रकाश, दीपचंद शंकर, श्याम सुंदर, सुरेंद्र चौहान जी, अनिल कुमार डामोर जी, हरिचंदन कुमार जी, हेमेंद्र डामोर जी, महेंद्र डामोर जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं घर से निकलते ही। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बड़ोदिया से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों द डर्टी पिक्चर। गीत के बोल हैं इश्क सूफियाना। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे सतीश पांडे बांसवाड़ा से जुड़ना चाह रहे। बड़ोदिया से हैं विशाल, दिनेश चंद्र, राधेलाल सीताराम, ओमकार रावत, मनोहर जी, रमेश प्रसाद, रविशंकर गुप्ता जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं रायबरेली से भी मेघराज मीणा, शैलेश रविंद्र, सत्येंद्र रामसेवक जी। गांटोल से राकेश सहाय, राम सहाय, शिवम कुमार सहाय, भैयालाल जी, भोला देवी जी, अखिलेश, सतीश कुमार और आनंद जी। रायबरेली से हैं मेघराज मीणा, प्रेम टाम्बू, अक्षय कुमार, अरुण सुरेंद्र, दिनेश कटारा, लाला राम जी, केशव प्रसाद, सीताराम, देवीराम, प्रमोद कुमार जी, रतन टाटा जी और दीपक कुमार, संदीप जैन, अभिषेक जैन, वीरेंद्र कुमार और देवेंद्र जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी। आपको बताना चाहूँगी, जुड़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र साहू, विकास साहू, राकेश साहू, आकाश साहू और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। धौलपुर से है वीरेंद्र साहू, अनिता साहू, अनिता साधु, रितेश साधु, प्रतीक्षा साधु, विमलेश पमलेश जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं इश्क सूफियाना। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस पहले से गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की ओर। जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है साथियों, इसी बीच अगली फरमाइश हमारे बीच आई है धनपुरा से। फिल्म का नाम है आपको बताना चाहूँगी सूर्य गीत के बोल हैं कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आना। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे भूमिका कुमार जी, नरेश चौहान, मनोज कुमार, मीणा जी, मेघराज मीणा, सुरेश जी। इसी बीच बिलवाड़ा से जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह, लक्ष्मण चौधरी, चंद्रपाल राय प्रसेन जी, महावीर देवीलाल, राजा राम, मनसाराम और संदीप जी। प्रतापपुर से हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, हेमंत टेलर, पुष्पा कुमार, आशाराम, रमेश लाल, प्यारेलाल जी। घाटोल से हैं श्यामलाल, घनश्याम, राधेलाल, लालाराम, अरविंद, राहुल, जसवंत जी, मेघराज मीणा जी। और भी श्रोता साथी हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। उदयपुर से हैं जशवर्धन चौहान, हर्षवर्धन मनारिया जी, सत्यम मीणा, संजीव कमलेश डाबीराव जी, रोहित सामरिया जी और वैजेंद्र कुमार जयचांद जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आना। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: श्रोता, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मोहब्बत फिल्म का गीत पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में रायबरेली से मेघराज मीणा, शैलेश रविंद्र, सत्येंद्र राम सेवक जी, राकेश कुमार जी, राम साय शिवम कर्मा जी, और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भोला भाई, अखिलेश, संतोष कुमार, आनंद, ये घाटोल से जुड़ रहे हैं, और भी दोस्त हैं मेघराज मीणा, प्रेम डामोर, संजय कुमार, अरुण कुमार, सुरेंद्र दिनेश कटारा, लाला राम, केशव प्रसाद, सीताराम, देवी राम, प्रमोद प्रजापत, रतन कुमार जी, ये कुशलगढ़ से जुड़ रहे हैं, और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी साथियों जुड़ रहे हैं हमारे बीच में रायबरेली से मेघराज मीणा, सत्येंद्र पांडे, सत्येंद्र पांडे, विशाल दिनेश चंद्र, राधेलाल, सीताराम कागड़ा जी, ओमकार रावत, हनुमंत है मनोहर, बंटी प्रजापत जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पैरों में बंधन है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: अब ये झुकने वाली नहीं,

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। आपको बताना चाहूँगी साथियों, जुड़ रहे हैं बड़ोदिया से विशाल, दिनेश चंद्र, राधेलाल, सीताराम, ओमकार रावत, हनुमत जी। इन श्रोता साथियों की फरमाइश है गोपी किशन फिल्म का गीत छतरी ना खोल बरसात में। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। घाटोल से हैं पन्ना लाल जी, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, बंटी प्रजापत जी, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनवी बोट और विश्वता साथी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं। सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, मानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दिनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदेही जोशी। सियापुर से दयाराम प्रजापति, हरिशंकर प्रकाश, दीपचंद्र शंकर, श्याम सुंदर जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे। सुरेश चौहान, अनिल कुमार डामोर, अभिषेक कटारा, हरिचरण कुमार, महेंद्र डामोर, सीताराम जी। चित्तौड़ से हैं निकिता शर्मा, अरविंद जी, राजेश शर्मा, राजकुमार, नरेश चौहान, मुकेश शर्मा, महेंद्र, इमरत, वीरेंद्र, शैलेंद्र, सत्यम, प्राणी कुमारी जी, सुरेंद्र मीणा, सुरेश जी, देवेंद्र प्रजापत, अभिनव दयाल शर्मा जी और भी दोस्त हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं। घाटोल दानपुर से ही हंसराज, विकास, विरास चौहान, वीरेश चौहान, मिथिलेश, वीरेंद्र, देवेंद्र कटारा जी, राधेलाल, संदीप चौहान, गणेशलाल, रामेश्वरम, सुंदरलाल और दीपक कुमार जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं छतरी ना खोल बरसात में। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से गीत संगीत के साथ आपको मनोरंजन करवाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। गीत के बोल हैं आज का, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और सतबीर कुमार ने। फरमाइश करता है इस गीत की, कोटा से हैं रघुवीर, कुलदीप और मगनलाल, सिरोही से हैं कृष्णा, कुलदीप राठौर और मनीषा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना लता मंगेशकर और सपिर कुमार की आवाज़ में। अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनारी और इस गीत को आवाज़ दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। फरमाइश करता है इस गीत के मंडूर से हैं हुकुम सिंह चांदनी राजेश्वरी और भंवर लाल, लोहावट से हैं गणेश राम कमला किशोर और मधुबाला, नारायण विमला देवीलाल और सुशील, शेरगढ़ से हैं मदन लाल जमुना पवन इंदिरा ओम प्रकाश सरस्वती विक्रमादित्य और प्रेमलता, आहोर से हैं गुरुवर्धन चंद्रकला राजू मंगला, बाली से हैं जगदीश सुशील अश्विनी शारदा भूपेंद्र लक्ष्मण कमलेश्वरी और रतन, जीतारण राजस्थान से हैं शंकरलाल फूलशंकर देवेंद्र सरिता बेराराम रुक्मणी दिनकर और मधु। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं तुम सब प्यारा कोई मासूम नहीं है। इस गीत को आवाज दी है कुमार शानूर अलका याग्निक ने। फरमाइश करता है इस गीत के मंसूर से हैं हरिओम गायत्री नरेश चंचल कैलाश ललिता सुरेश और वसुधरा मध्य प्रदेश धार से हैं गोविंद राम पुष्पा राजेंद्र शांति गणपत सीता ब्रजेश और ममता बड़वानी से हैं नंदकिशोर राधेश्याम रमा हितेश महेश देवकी चंद्रशेखर भारती रामनिवास तुलसी मोहनलाल और नीलम मनासा से हैं शंकर उर्मिला धनंजय और सुजाता कासगंज से हैं रामवीर सरोज और सचिन श्वेता शिव कुमार मंजू देवेश और सुनीता और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। बिसोली से हैं धर्मपाल ममता आशीष और रजनी वीरेंद्र अंजू ललित और मधु बिलसी से हैं राजपाल उषा निखिल और कुसुम शिकोहाबाद से हैं यशपाल पूनम आकाश सविता रामकिशोर निशा गौरव और मंजू महेंद्रपाल सुनीता तरुण कविता कयामगंज से हैं ये टुडला से हैं देवेंद्रपाल शिखा मनीषा राधा वीरेंद्र अंजू हरेंद्र मीना कपिल और साधना। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपके फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत की, बोल है किसी से तुम प्यार करो। फरमाइश करता है इस गीत की पोखरड़ से हैं रूपा राम संतोषी मदन और रतन कंवर, हनुमान राम लीला देवी और किशन लाल और चंद्रा जैसलमेर के सम क्षेत्र से हैं ये। मोहनगढ़ से हैं डालू राम धापू देवी गणपत और मीराबाई, चौटन से हैं खेता राम अनीता देवी भिकाराम और सुगन, शिवाना से हैं जगलमाल नाथुराम धनी त्रिवेदी और कैलाशी, बालोत्रा से हैं तेजाराम भवरी देवी हरीश और गजेंद्र, मूलाराम चंपा देवी नरपत और शगुनाराम, धोरीमन्ना से हैं भीम सिंह पार्वती लादूलाल और जमुना देवी, कानाराम बंसीलाल जशोदा देवी और मेघाराम। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है किसी से तुम प्यार करो।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है बाजीगर और टाइटल सॉन्ग है श्रोता साथियों फरमाइश करता है इस गीत की, खंडवा से है मुरलीधर, सावित्री, बलराम, देव कुमार, रघुवीर, निर्मला, हेमराज और इंदुबाई। खरगोन से है बाबूलाल, कौशल्या, नंदलाल, जानकी, कैलाश चंद्र, ताराबाई, श्यामलाल और रुक्मणी। सेंधवा से हैं ईश्वरलाल, लीलाबाई, किशोर चंद्र और प्रेमबाई, हरिदास, भगवती, चंद्रपाल और सुशीला। जाबोट से हैं हरिदास, भगवती, चंद्रपाल, सुशीला, दौलतराम, कमलाबाई, मोतीलाल और राधाबाई। अलीराजपुर से हैं सोहन, फूलवती, तेज सिंह और कमलाबाई, भीमराव, हीराबाई, मगन सिंह और बंसी, देवी सिंह, मांगीलाल, रूप सिंह और ताराबाई। ये सभी झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना बाजीगर फिल्म का। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, उत्तर प्रदेश से है ब्रजमोहन, राधेश्याम, विमला और हेमलता। हाथरस क्षेत्र से हैं गिरधारी, श्याम सुंदर, कमलेश्वरी और ललिता। नंदकिशोर, कौशल्या, बलवीर, जमुना। जलेसर से हैं हरिओम, चंद्रवती, राजवीर, पुष्पा, दिविकनंद, विमलेश, सूरज और रामदुलारी। छत्तीसगढ़ से हैं रूप सिंह, कुसुमलता, वीरपाल, कमला, ब्रजेश, श्यामवती, राम सेवक और रामकली। भोगांव उत्तर प्रदेश से हैं ओमवीर, रामश्री और यशवीर कृष्ण, शिवराज, फूलमती, धर्मवीर, सुलेखा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, जीत फिल्म का। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है विजयपथ, गीत के बोल है राहों में उनसे मुलाकात हो गई। फिल्म का नाम जैसा कि हम जान पाए विजयपथ है, और इस गीत को आवाज़ दी है कुमार शानूर अलकायाग्निक ने। फरमाइश करता है इस गीत के बुरावर से हैं सुनीता, कमलेश, राकेश, पूजा, मनीष, संतोष, कविता और महेंद्र। बालेसर से हैं गोविंद, ममता, नरेश, प्रियंका, हेमंत, रेखा, दिनेश, सरोज। विलाड़ा से हैं अशोक, निर्मला, सुरेंद्र, किरण, राजू, सीमा, मुकेश और अंजू। अनुरोध करता है इस गीत के सुमेरपुर से हैं दिनेश, गायत्री, सुरेश, रानी, चेतन, लक्ष्मी, विनोद और मनीषा। भोपालगढ़ से हैं अर्जुन, संतोषी, रवि, ज्योति, राहुल, शीतल, आकाश और नेहा। तराना से हैं दीपक, रश्मि, विकास, सरिता, लोकेश, अर्चना, नितिन और कविता। मनावर से हैं मोहन, रंजना, श्याम, कुसुम, हरीश, सीमा, राजेंद्र और सुनीता। बालूर बरौली से हैं राजीव, कंचन, पंकज, मोनिका। माऊ से हैं संजय, पूनम, कमल और निशा। जालौन से हैं अतुल, ज्योति, मनोज, रचना, अजय, सीमा, सुनील और रितु। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, और यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

भाइयों बहनों, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित था वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लग्या इन्हें बल्ले आप मने राय सुझाव आली शको हमारे अणपता माते। हमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमर अणा फोन नंबर माते। अमारू फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बोनू आ तो हती अपने आसनी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात था।

इन्हें बाद भाइन बोनू मनोरंजन नहीं था का पूरी भरमार जिन्हें आप हम रोगा कार्यक्रम फिल्म संगीत 9 तक की 10 बजे दी आप हम रोगा कार्यक्रम शामिल कर सर। तो भाइन बोनू आ तो हती अपने हाजिर ने सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आप सभा की शुरुआत करो भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराध्य।

0: आज के सुविचार।
1: सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए, जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया।

करुणा और प्रतिशोध का आधार क्रोध अहंकार अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: दर्शनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।
1: परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अणी माटी में जन्मी हूँ, अणी माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ, मैं खेत हंबारिया बीज बोया वो पसल बहाई वो मिश्रम करो तो पसे बाप दादा नी जन्म माते मारो अधिकार किम नती। सूरी जन्म तकीस हकदार है, कानून ने आ बात मानी है, न पन्या पूटे न हक को ले सके, न रिवाज न सच ने बदली सके।
4: बाप दादा नी जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक, इन्हें पहचान।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं के आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, हमारा विषय रहने वाला है मानवता और युवा को लेकर, जो कि दूसरों के लिए कुछ करने की भावना।
0: जी हाँ,
1: यानी कि श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो केवल किसी एक व्यक्ति समाज या वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है और वो है मानवता। यानी कि जिंदगी में हम सभी अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, हम अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, हमारी आर्थिक मजबूती का भी हम ध्यान रखते हैं, हमारी पहचान बनाना चाहते हैं, साथ ही हम ये चाहते हैं कि हमें हर जगह सफलता मिले।
0: बिल्कुल,
1: ये सभी हमारे जीवन के जरूरी लक्ष्य होते हैं कशिश। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए श्रोताओं, कि क्या हमारी सफलता केवल हमारे लिए है या उससे किसी और के जीवन में भी थोड़ी सी खुशी, उम्मीद और सुविधा आ सकती है।
0: जी हाँ।
1: और यही सवाल हमें मानवता की ओर ले जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से युवा और मानवता का रिश्ता क्या होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना जरूरी है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो पहले मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और हमारी बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं मानवता और युवाओं को लेकर, जो कि दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अगर मानवता के अर्थ को हम जाने तो देखते हैं साथियों कि मानवता का मतलब है किसी जरूरतमंद को पैसे देना नहीं, बल्कि किसी दूसरे के दर्द को समझना, उसकी परिस्थितियों का सम्मान करना, जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आना और बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना।
0: जी हाँ
1: जागृति जी, जब यही भावना हमारे युवा साथियों के भीतर पैदा होती है तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। युवा ऊर्जा, विचार, समय, तकनीक और साथ ही रचनात्मकता से समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम जैसा कि जानते हैं कि युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। युवाओं के पास ऊर्जा भी होती है, नए विचार भी होते हैं और कुछ नया करने का साहस भी होता है।
0: आज का युवा केवल अपने भविष्य का निर्माता नहीं है कशिश, बल्कि वो अपने परिवार, समुदाय और देश के भविष्य को भी दिशा दे सकता है। लेकिन श्रोता साथियों, युवा शक्ति का सही अर्थ केवल ये नहीं है कि युवा कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है।
1: बिल्कुल,
0: असली सवाल तो ये भी है कि वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल दूसरों के लिए कितना करता है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी युवा को पढ़ाई में अच्छी समझ है, वो केवल खुद अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित रह सकता है, या फिर अपने आसपास के किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा सकता है जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है।
1: बिल्कुल,
0: किसी युवा को कंप्यूटर और मोबाइल की अच्छी जानकारी है, वो केवल सोशल मीडिया चलाने तक ही सीमित रह सकता है, या फिर किसी बुजुर्ग को ऑनलाइन जरूरी काम करना सिखा सकता है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि किसी युवा को खेती की नई तकनीकों की जानकारी है तो अपने गांव के किसानों के साथ वो जानकारी साझा भी कर सकता है। किसी युवा में अच्छा संवाद करने की क्षमता है कशिश, तो वो लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, स्वच्छता का ज्ञान दे सकता है, पर्यावरण और स्वास्थ्य, सामाजिक की जिम्मेदारियों के बारे में वो जागरूक कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि श्रोता साथियों, मानवता के लिए हमेशा बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही भावना की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अब श्रोता साथियों प्रश्न ये है कि मानवता की शुरुआत होती कहाँ से है।
0: जी हाँ,
1: तो हम देखते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि समाज के लिए कुछ करने का मतलब बहुत बड़ा अभियान चलाना है। लेकिन जागृति जी, मानवता की शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि घर में किसी बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनना भी मानवता है साथियों, किसी परेशान दोस्त का साथ देना भी मानवता की निशानी है, किसी जरूरतमंद को सही रास्ता बताना भी मानवता है, किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद करना भी मानवता है, किसी सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता बनाए रखना, किसी व्यक्ति की कमजोरी या मजबूरी का मजाक न उड़ाना भी श्रोता साथियों मानवता होता है। किसी की गलती पर उसे अपमानित करने के बजाय समझाना मानवता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि मानवता केवल बड़े कामों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देती है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि दूसरों के लिए कुछ करने की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्यों होनी चाहिए उसको लेकर हम बात करें तो आज का समय हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की दौड़ में लगा हुआ है। कई बार हम अपनी परेशानियों और इच्छाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आसपास के लोगों की जरूरत को देख भी नहीं पाते।
1: जी,
0: ऐसे समय में दूसरों के लिए कुछ करने की भावना हमें एक बेहतर इंसान बनाती है श्रोताओं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल सामने वाले को ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि हमारे भीतर भी संवेदनशीलता, धैर्य, संतोष, जिम्मेदारी, ये सारी खूबियां जो है वो विकसित होती हैं। दूसरों की मदद करने वाला युवा समाज की वास्तविकताओं को करीब से समझता है। उसे पता चलता है कशिश कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। किसी के पास पढ़ाई के साधन है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास परिवार का सहयोग है तो किसी के पास नहीं है श्रोताओं। किसी के पास रोजगार का अवसर है तो किसी के पास नहीं है। किसी के पास अपनी बात कहने का आत्मविश्वास है तो कोई अपनी परेशानी किसी से साझा भी नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल,
0: जब युवा इन परिस्थितियों को समझता है कशिश, तो उसके भीतर सहानुभूति पैदा होती है और सहानुभूति से ही मानवता मजबूत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम हमारे युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि मानवता जो है वो कुछ कर गुजरने की भावना है।
0: जी हाँ,
1: तो इस विषय को लेकर आगे भी कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुख करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि युवा साथियों, बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि मानवता कुछ कर गुजरने की भावना होती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही मानवता क्यों जरूरी है, इस विषय को लेकर गीत से पहले हम बात कर पाए थे। यही अगर बात करें तो सहानुभूति मानवता की पहली सीढ़ी होती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, दूसरों की मदद करने से पहले हमें दूसरों को समझना सीखना होगा। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में तुरंत राय बना लेते हैं। कोई पढ़ाई में कमजोर है तो हम उसे आजी कह देते हैं। जागृति जी, कोई चुप रहता है तो हम उसे घमंडी समझ लेते हैं। वहीं साथियों, कोई आर्थिक परेशानी में होता है तो उसकी स्थिति को उसकी गलती हम मान लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके पीछे कौन सी परिस्थितियाँ हैं। इसलिए युवा साथियों के लिए जरूरी है कि वे निर्णय देने से पहले समझने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल।
0: किसी के लिए हमारे कुछ शब्द श्रोता साथियों बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता से ज्यादा जरूरत होती है, कोई उसे ध्यान से सुने और कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
1: बिल्कुल।
0: अगर देखा जाए साथियों तो यही मानवता है।
1: बिल्कुल कशिश। और अब सवाल आता है कि युवा वास्तव में दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत बड़ा है श्रोता साथियों। शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं, डिजिटल ज्ञान साझा कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं, बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर हमारे युवा साथी करेंगे, उनके मन में जो मानवता है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि आज हम युवाओं के हाथों में एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है, वो है सोशल मीडिया। इसका इस्तेमाल केवल हम मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव के लिए भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: युवा सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैला सकते हैं, अच्छे कार्यों की जानकारी साझा कर सकते हैं और लोगों को सकारात्मक गतिविधियों से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मानवता दिखाने के लिए कैमरा जरूरी नहीं है श्रोता साथियों। अगर हम किसी की मदद केवल इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, तो हमें अपनी भावनाओं पर विचार करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: सच्ची मदद तो वो है जिसमें सामने वाले की गरिमा बनी रहे।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों, हमें मानवता को केवल आर्थिक मदद से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को रोजगार की जानकारी देना, किसी युवा को सही करियर विकल्प समझाना, किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की जानकारी देना हो श्रोता साथियों, या किसी किसान को उपयोगी जानकारी पहुँचाना हो, ये सभी मानवता के उदाहरण है। कभी कभी सही जानकारी देना भी मदद हो सकती है और कभी कभी सही व्यक्ति से जोड़ देना भी मदद हो सकती है।

0: साथी श्रोता साथियों, कभी कभी गलत समय पर गलत सलाह देने के बजाय चुपचाप सुन लेना भी आपकी मदद हो सकती है। याद रखिए, दूसरों की मदद करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि युवा अपनी पढ़ाई या करियर को छोड़ दें।
1: जी हाँ,
0: बल्कि जागृति जी, ये एक मजबूत युवा होते हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए समाज के लिए कुछ करने की जगह बनाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने कौशल को मजबूत कीजिए, करियर के लिए मेहनत कीजिए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ समाज के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि आत्मनिर्भर युवा समाज की जिम्मेदारी से भागता नहीं है बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं मेरे अकेले कुछ करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इतिहास और समाज दोनों हमें बताते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक युवा एक बच्चे को पढ़ाता है, वो बच्चा आगे चलकर 10 बच्चों को पढ़ाता है, 10 बच्चे आगे जाकर समाज में अपना योगदान देते हैं। यानी कि श्रोताओं, एक छोटा सा प्रयास भी भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, बल्कि आप ये सोचिए कि मैं आज से शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
0: जी
1: दूसरों
0: हाँ।
1: की मदद करते समय हमें ये याद रखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारी दया का पात्र नहीं बल्कि सम्मान का अधिकारी है। यदि हम किसी की सहायता करते हैं और बदले में उसे छोटा महसूस करवाते हैं तो हमारी मदद का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं को खास तौर पर समझना होगा कि किसी की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पहनावे, भाषा, सामाजिक स्थिति के आधार पर उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप खुद से एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिएगा।
1: बिल्कुल,
0: कि अगले 7 दिनों में आप कम से कम एक ऐसा काम करेंगे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को वास्तविक मदद मिले। श्रोता साथियों, वो काम छोटा हो सकता है, जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी जरूरतमंद को सही जानकारी देना या किसी दोस्त की परेशानी सुनना।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही किसी सार्वजनिक स्थान को साफ रखना साथियों, किसी पौधे की देखभाल करना या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करना जो खुद पर विश्वास खो रहा हो। लेकिन श्रोता साथियों, एक शर्त है, वो है कि उस काम का उद्देश्य केवल अच्छा इंसान बनना हो, दिखावा करना नहीं।
1: जी हाँ कशिश, तो हमारे युवा साथियों को आज की बातचीत से हम यही कहना चाहेंगे कि मानवता कोई बहुत कठिन या दूर की चीज नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: मानवता हमारे व्यवहार में है, हमारे शब्दों में है, हमारे निर्णयों में है, हमारे समय में है और सबसे बढ़कर हमारी भावना में है। युवा उम्र केवल अपने सपने देखने की उम्र नहीं है श्रोताओं, बल्कि अपने सपनों के साथ समाज के सपनों को समझने की उम्र भी है।
0: बिल्कुल,
1: हम डॉक्टर बने, शिक्षक बने, किसान बने, इंजीनियर बने, कलाकार बने, उद्यमी बने या किसी क्षेत्र में जाए, अपने भीतर इंसानियत को हमेशा हमारे अंदर जीवित रखना है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक सफल व्यक्ति बनना अच्छी बात है, लेकिन एक सफल और संवेदनशील इंसान बनना उससे भी बड़ी उपलब्धि है।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए श्रोताओं, समाज को बदलने के लिए हमेशा बड़े पद की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी एक अच्छा विचार, एक संवेदनशील दिल और एक छोटा सा प्रयास भी काफी होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इसलिए श्रोता साथियों, अपने लिए सपने देखिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी सफलता में दूसरों के लिए थोड़ी जगह जरूर रखिए, क्योंकि जिस युवा की सफलता से केवल उसका जीवन नहीं बल्कि किसी और का जीवन भी बेहतर होता है जागृति जी, वही युवा समाज की असली ताकत बनता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी सकारात्मक सोच के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो दोस्तों विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत, आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, हम जब भी कार्यक्रम के माध्यम से हाजिर होते ही तो हमारी आपसे बातचीत का एक नया विषय होता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज का श्रोता साथियों हमारा विषय ही बच्चों को समय का महत्व कैसे सिखाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, हम सभी के पास दिन के एक जैसे 24 घंटे होते हैं। किसी के पास समय ज्यादा नहीं होता है और किसी के पास ना ही कम। फर्क केवल श्रोता साथियों इतना होता है कि हम उस समय का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। बच्चों की दुनिया में श्रोता साथियों समय कभी खेलते खेलते निकल जाता है, कभी मोबाइल देखते हुए, कभी दोस्तों के साथ बातें करते हुए और कभी यह सोचते हुए कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन श्रोता साथियों यही छोटी सी आदत धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है। काम टालने की आदत से पढ़ाई अधूरी रह सकती है, जरूरी काम छूट सकते हैं और आखिरी समय में तनाव बढ़ सकता है। जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को समय का महत्व केवल घड़ी देखकर नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें यह अनुभव कराना भी जरूरी है कि समय बीत जाने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जी हाँ श्रोता साथियों, इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को समय का महत्व कैसे सिखाएं।

0: कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि बच्चों का समय है वो खेलते खेलते, कभी मोबाइल देखते हुए, कभी दोस्तों से बातें करते हुए, और कभी यह सोचने में निकल जाता है कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है और बाद में कर लूंगा काम है वो। लेकिन श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि यही छोटी सी आदत धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती है। काम टालने की आदत से पढ़ाई है वो अधूरी रह सकती है, जरूरी काम छूट सकते हैं और आखिरी समय में तनाव ही वो बढ़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को समय का महत्व केवल घड़ी देखकर नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें यह अनुभव कराना भी जरूरी है कि एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। जी हाँ श्रोता साथियों, आज के नाटक में भी एक बच्ची हर काम को बाद में करने की आदत में है, लेकिन एक छोटा सा अनुभव उसे समझाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं कहानी, जो समय आज है वही सबसे कीमती है।
1: सुबह का समय, घर में स्कूल जाने की तैयारी चल रही है। ईरा आराम से बैठी जूते पहन रही है, उसकी स्कूल की कॉपी खुली है और माया उसके पास आती है।
2: अरे ईरा, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया क्या?
3: नहीं, अभी नहीं, आज शाम को कर लूंगी।
2: अच्छा, कल भी तो तुमने यही कहा था।
3: तो क्या हुआ, अभी तो समय है ना।
2: अच्छा, और गणित का अभ्यास?
3: वो भी शाम को।
2: और जो चित्र प्रतियोगिता के लिए बनाने थे वो?
3: वो भी शाम को।
2: तो आज शाम तुम्हारे पास कितने घंटे होंगे?
3: काफी होंगे।
2: यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
3: कौन सी गलतफहमी?
2: तुम समय को घंटों में देखती हो, लेकिन काम को उसकी मेहनत में नहीं देखती। तुम सोचती हो कि शाम को सब कर लूंगी, फिर शाम को थकान होगी, खेलने का मन करेगा, कोई दोस्त बुलाने आ जाएगा और फिर तुम कहोगी कल कर लूंगी।
3: अरे दीदी, आप भी ना इतना मत सोचो, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा।
2: ईरा, एक दिन में शायद फर्क न पड़े, लेकिन रोज का एक दिन मिलाकर पूरा महीना बना देता है, और यही महीना आगे चलकर साल बन जाता है।
3: मतलब आप कह रहे हो कि मेरी बाद में करूंगी वाली आदत नुकसान कर सकती है?
2: बिल्कुल। समय को बचाने का मतलब घड़ी को रोकना नहीं है, समय बचाने का मतलब है जो काम जरूरी है उसे सही समय पर पूरा करना।
3: ओ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि दिन को व्यवस्थित कैसे करूं?
2: तो आज हम एक प्रयोग करेंगे।
3: कैसा प्रयोग?
2: आज तुम पूरे दिन का हिसाब रखोगी, कब पढ़ाई करोगी, कब खेलोगी, कब आराम करोगी, कब बिना किसी जरूरत काम के समय निकालोगी। शाम को हम दोनों बैठकर देखेंगे कि तुम्हारा समय कहाँ गया।
3: अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार रहेगा।
2: और शायद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि समय कम नहीं था, बस उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ।
3: ठीक है दीदी, मैं आज पूरा हिसाब रखूंगी।
2: अच्छा तो मैडम, आज के समय का हिसाब कैसा रहा?
3: दीदी, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा।
2: क्यों?
3: मैंने सोचा था कि मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन आज जब मैंने हिसाब लिखा तो पता है क्या हुआ? मुझे ये पता चला कि मैंने लगभग एक घंटा बेवजह इधर उधर कर दिया। कभी सामान ढूंढने में समय गया, तो कभी काम शुरू करने से पहले ही बैठी रही, और कई बार बस यही सोचती रही कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद।
2: देखा, यही तो समय की असली सीख है। समय अक्सर बड़े कामों में नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों में बर्बाद होता है।
3: अब मुझे समझ आ गया, अगर मैं हर काम को आखिरी समय के लिए छोड़ूंगी तो एक दिन सारे काम मेरे सामने खड़े हो जाएंगे।
2: बिल्कुल, और तब तुम्हें लगेगा कि समय बहुत कम है।
3: हाँ, जबकि समय कम नहीं था, मैंने उसे सही जगह दिया ही नहीं।
2: बिल्कुल।
3: अब मैं दीदी रोज 3 जरूरी काम पहले तय करूंगी। पहला जरूरी काम, फिर खेल, और फिर मनोरंजन, और किसी काम को बिना वजह कल पर भी नहीं छोड़ूंगी।
2: बिल्कुल, यही आदत तुम्हें आगे ले जाएगी ईरा।
3: हाँ, आज मुझे एक बात समझ आ गई, समय की कद्र घड़ी देखने से नहीं, अपने काम पूरे करने से होती है।
2: बिल्कुल, और याद रखना,
1: समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए जो अच्छा काम आज किया जा सकता है उसे बिना वजह कल पर नहीं छोड़ना चाहिए।
0: श्रोता साथियों, आज की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बच्चों को समय का महत्व डांट कर नहीं बल्कि उन्हें समय का अनुभव कराकर समझाया जा सकता है। बच्चों को एक साथ बहुत सारे नियम देने के बजाय साथियों उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य बनाना सिखाएं। दिन में पढ़ाई, खेल, आराम, परिवार और मनोरंजन, हर चीज के लिए उचित समय तय करने में उनकी मदद करें। उन्हें श्रोता साथियों यह भी समझाएं कि बाद में कहने की आदत कब हमारे काम को मुश्किल बना देती है। श्रोता साथियों, समय की अच्छी आदत बचपन से बन जाए तो आगे की जिंदगी में पढ़ाई, काम और जिम्मेदारी को संभालना बहुत ही आसान हो जाता है। याद रखिए श्रोता साथियों, समय न दिखाई देता है न सुनाई देता है, लेकिन हमारे हर फैसले के साथ आगे बढ़ता रहता है। जो बच्चा समय की कीमत समझता है वह अपने आज को बेहतर बनाकर कल को मजबूत करता है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को घड़ी देखना नहीं समय का सम्मान करना सिखाएं। आज का छोटा सा काम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। इस संदेश के साथ श्रोता साथियों हम आपसे विदा लेते हैं। समय का सम्मान कीजिए, आज को सार्थक बनाइए और अपने सपनों के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही और जो नाटक रहा वो आपसे भी कुछ जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
7: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
7: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बहनों, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एवो केवाय जैवेरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तैवेरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं।
0: पण मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी, अने आपड़े अस्तित्व नी पहचान थकी।
2: जमीन पैसा माते बैरा नो नाम, एने हपना नो पहलू पगतियो है।
0: इने मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा, अने आपड़ा फैसला खुद लेवानी ताकत।
2: तो आओ बनो आज मली ने आवाज उठावा। એટલે હંગરી સૂર્ય, હંગરી બુને, હંગરી માય આપણા હકને જમી માતે ગર્વ થકી ઉભી થઈ શકે।
0: બોનને અધિકાર, કેમ કે અધિકાર જ અસલી તાકત હે।
3: વાગડ રેડિયો એવમ વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત।
4: થારી મે પાસો લાવો જૂનું હવાદ, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने का हम संकल्प किस तरह से हमारे अंदर होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अंजलि, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। सपने हमें बताते हैं कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, लेकिन केवल सपना देख लेना पर्याप्त नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सपना तभी हकीकत बनता है जब उसके साथ मेहनत, धैर्य और उसे पूरा करने का मजबूत संकल्प जुड़ जाए। क्योंकि सपने आंखें बंद करके देखे जाते हैं श्रोताओं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आंखें खोलकर लगातार प्रयास करने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से इस विषय पर हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को क्यों न हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि सिर्फ सपना नहीं, उसे पूरा करने का संकल्प भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने का सपना देखता है।
0: बिल्कुल,
1: कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार तो कोई अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। श्रोता साथियों, सपने हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें भविष्य की एक सुंदर तस्वीर दिखाते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन जागृति जी, केवल सपना देख लेना सफलता की गारंटी नहीं है। सपने तभी साकार होते हैं जब उनके साथ मजबूत संकल्प, निरंतर मेहनत, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास जुड़ जाए। क्योंकि सपना देखना आसान होता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना चुनौतीपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, कुछ समय तक उत्साह के साथ प्रयास भी करते हैं, लेकिन जागृति जी, थोड़ी सी कठिनाई आने पर पीछे हट जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। वे असफलताओं से सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यही दृढ़ संकल्प उन्हें सफलता के करीब ले जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि अगर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं कि आखिर सपना होता क्या है, तो श्रोता साथियों आप भी जानते हैं कि सपना क्या होना चाहिए। सपना केवल भविष्य की कोई इच्छा नहीं है, सपना तो विचार है जो हमारे भीतर कुछ बड़ा करने की हमें प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई विद्यार्थी सोचता है अंजलि कि उसे पढ़ लिख कर समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनना है, जब कोई युवा अपने गाँव में रोजगार के अवसर पैदा करने का विचार करता है, या जब कोई व्यक्ति अपने जीवन

0: को बेहतर बनाने का लक्ष्य तय करता है तो यही सपना उसके जीवन की दिशा बन जाता है।
1: जी जी।
0: लेकिन सपना तभी सार्थक है जब हम उसके लिए कार्य करना शुरू करें। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाने का सपना देखता है श्रोताओं, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं दे पाता तो सपना केवल कल्पना बनकर रह जाता है।
1: जी जी।
0: और इसी के विपरीत यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है, समय का सदुपयोग करता है और कठिन विषयों पर अधिक मेहनत करता है तो उसका सपना धीरे धीरे लक्ष्य में बदलने लगता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें संकल्प की शक्ति की तो श्रोता साथियों, संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय करना।
0: बिल्कुल।
1: जब व्यक्ति मन में यह तय कर लेता है जागृति जी कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो वह अपने उद्देश्य की दिशा में प्रयास करता रहेगा,
0: जी हाँ।
1: तब संकल्प की वास्तविक शक्ति सामने आती है। संकल्प हमें केवल यह नहीं बताता कि हमें क्या पाना है बल्कि ये भी प्रेरित करता है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सपना कहता है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन संकल्प कहता है कि मैं मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजूंगा और लगातार चलता रहूंगा।
0: बिल्कुल।
1: जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है, संसाधनों की कभी कमी हो जाती है तो कभी समय नहीं मिल पाता तो लोग हमारा मजाक बना लेते हैं, या पहली कोशिश में सफलता नहीं मिल सकती, ऐसे समय में संकल्प ही हमें टूटने से बचाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सपना और लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। सपना हमारी इच्छा है और जबकि लक्ष्य उस इच्छा को पूरा करने की स्पष्ट योजना है।
1: जी जी।
0: श्रोताओं, कोई युवा कहता है कि वो अपने क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर बनाना चाहता है तो ये एक सपना है, लेकिन वो ये तय करता है कि वो बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाएगा, सप्ताह में कुछ घंटे बच्चों को पढ़ाएगा और लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेगा तो सपना लक्ष्य का रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए जीवन में केवल ये सोचना पर्याप्त नहीं है श्रोताओं कि मुझे सफल होना है, इसके साथ यह भी तय करना बहुत जरूरी है कि सफलता पाने के लिए आज से कौन सा कदम उठाया जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं मिलती, उनके लिए छोटे छोटे प्रयासों की लंबी यात्रा होती है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति श्रोता साथियों एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता, वह एक एक कदम आगे बढ़ता है। उसी प्रकार जीवन के बड़े सपनों को भी छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना चाहिए। यदि विद्यार्थी एक एक कदम आगे बढ़ता है उसी प्रकार जीवन के बड़े सपनों को भी छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना चाहिए। यदि विद्यार्थी को जागृति जी एक वर्ष में कोई परीक्षा पास करनी है तो उसे पूरे वर्ष का अध्ययन एक ही दिन में नहीं करना चाहिए, वह रोज कुछ घंटे पढ़ सकता है, विषयों के अनुसार समय बांट सकता है और नियमित रूप से अपनी प्रगति देख सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसी तरह कोई व्यक्ति यदि कोई कौशल सीखना चाहता है तो रोज थोड़ा समय देकर धीरे धीरे उसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि श्रोता साथियों छोटे कदम भले ही छोटे दिखाई दें लेकिन निरंतरता के साथ यही कदम बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सपने को लेकर बात कर रहे हैं तो आगे जानेंगे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, असफलता रास्ते का अंत नहीं है, साथ ही हमारे श्रोता साथियों को हम अनुशासन और समय के महत्व के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उसके लिए दृढ़ संकल्प होना भी बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए मेहनत आवश्यक है। प्रतिभा व्यक्ति को शुरुआत में आगे ले जा सकती है जागृति जी, लेकिन लंबे समय तक सफलता पाने के लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी है। मेहनत का अर्थ केवल अधिक घंटे काम करना नहीं है, सही दिशा में लगातार प्रयास करना भी मेहनत है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, नई चीजें सीखना, कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास जारी रखना और अपनी आदतों में सुधार करना भी मेहनत का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होता है श्रोता साथियों, वह परिणाम की चिंता किए बजाय अपने प्रयास पर ध्यान देता है। उसे पता होता है कि आज की मेहनत ही आने वाले कल की सफलता की नींव बनेगी।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि श्रोताओं, असफलता रास्ते का अंत नहीं होती है। हम देखते हैं कि सफलता की यात्रा में असफलता का आना बहुत स्वाभाविक है। कई बार व्यक्ति पूरी मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में निराश होना सामान्य है, लेकिन हार मान लेना उचित नहीं है। हम देखते हैं अंजलि कि असफलता हमें ये बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। कोई युवा किसी परीक्षा में, जैसे कि आपने अभी बताया था कि वो सफल नहीं हो पाया, तो उसे देखना चाहिए कि उसकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई थी।
0: बिल्कुल,
1: अगर किसी योजना का परिणाम हमारे अनुसार नहीं आया है तो उसके कारणों को समझकर हमें अगली बार बेहतर तैयारी करनी होगी। श्रोताओं साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे आपको कि संकल्पवान व्यक्ति असफलता को अंतिम परिणाम नहीं मानता है, वो उसे सीखकर दोबारा प्रयास करता है और यही मानसिकता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि संकल्प को मजबूत बनाने में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम कोई लक्ष्य तय करके कुछ दिन मेहनत करें फिर उसे छोड़ दे तो सफलता मिलना कठिन होगा। नियमितता ही प्रयासों को परिणाम में बदलती है। इसलिए श्रोता साथियों, समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता, इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग करना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन का अर्थ समय पर पढ़ाई करना, विद्यालय जाना, गृह कार्य करना, खेलना, आराम करना और परिवार के साथ समय बिताना है। संतुलित दिनचर्या व्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाती है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि संकल्प तभी मजबूत रहता है जब व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास हो, क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है जागृति जी कि व्यक्ति को अपनी हर क्षमता पर पूर्ण विश्वास हो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करे। कई बार दूसरे लोग हमारे सपनों को छोटा समझ सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: वे कह सकते हैं कि यह काम कठिन है या तुम इसे नहीं कर पाओगे। ऐसे समय में हमें दूसरों की नकारात्मक बातों के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सीखने और मेहनत करने से हम अपनी क्षमता को बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, प्रेरणा हमें शुरुआत करने की ऊर्जा देती है, लेकिन निरंतरता हमें मंजिल तक पहुँचाती है। साथियों, किसी भाषण, पुस्तक या सफल व्यक्ति की कहानी से हमें कुछ समय के लिए प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन वास्तविक सफलता तब आती है जब हम उस प्रेरणा को अपने दैनिक जीवन के कार्यों में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए अंजलि, हमारे साथियों को हम बताएं कि किसी महान वैज्ञानिक की कहानी पढ़कर एक युवा प्रेरित होता है, तो उसे केवल कहानी पढ़कर उत्साहित नहीं होना चाहिए, उसे विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को विकसित करनी होगी, प्रश्न पूछने होंगे, प्रयोग करने होंगे और नियमित अध्ययन भी करने होंगे। श्रोताओं, प्रेरणा की रोशनी को मेहनत की लो में बदलना ही वास्तविक उपलब्धि है। आज का युवा सपनों से भरा हुआ है अंजलि, उसके पास नई तकनीक है, नई जानकारी है, नई संभावना है, वो अपने जीवन के साथ साथ समाज और देश के भविष्य को भी बदल सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन साथियों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि युवा केवल सफलता की कल्पना ना करें, बल्कि उसके लिए जिम्मेदारी भी स्वीकार करें, क्योंकि कहा गया है कि युवा अपने सपनों को स्पष्ट करे, लक्ष्य निर्धारित करे और उन्हें पूरा करने की योजना बनाएंगे, सोशल मीडिया और मनोरंजन के बीच अपने समय का संतुलित उपयोग करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अपने कौशल को विकसित करेंगे और असफलताओं से घबराएंगे नहीं, तो एक छोटा सा संकल्प आने वाले कल की बड़ी उपलब्धि बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जीवन में सपने दिखना जरूरी है, क्योंकि सपने ही हमें भविष्य की दिशा दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन केवल सपनों के सहारे जीवन नहीं बदलता, सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए दृढ़ संकल्प, मेहनत, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक है। हमें तय करना होगा कि हमारा सपना क्या है, उसे पूरा करने के लिए हम आज क्या कदम उठा सकते हैं, रास्ते में कठिनाइयां आएंगी असफलताएं मिलेंगी और कई बार मन भी निराश होगा, लेकिन यदि हमारा संकल्प मजबूत है तो हम हर कठिनाई से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में केवल यह न कहें कि मैं एक दिन सफल बनूंगा, बल्कि स्वयं से यह कहें कि मैं अपनी सफलता के लिए आज से ईमानदारी निरंतरता के साथ प्रयास करूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों सपना मंजिल दिखाता है, संकल्प रास्ता बनाता है और मेहनत उस रास्ते पर आगे बढ़ाती है। इसलिए सपना जरूर देखिए, लेकिन उसे पूरा करने का संकल्प भी लीजिए, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम जागकर मेहनत करते हैं। आज का संकल्प ही कल की सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें हुई, समय का मान रखते हुए अब हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम जानते हैं श्रोता साथियों कि हम भोजन के बिना कुछ दिन, पानी के बिना कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। फिर भी अक्सर अपने आसपास की हवा, वातावरण की स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान हम नहीं देते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, धुआं, धूल और गंदगी आज हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण केवल सुविधा ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण का क्या महत्व है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा महत्व है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना हम अपने दैनिक कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते।
1: जी जी।
0: अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल पौष्टिक भोजन और व्यायाम की ही आवश्यकता नहीं होती है साथियों, बल्कि हमें स्वच्छ हवा और साफ सुथरा वातावरण भी चाहिए। श्रोता साथियों, हम जो हवा सांस के रूप में अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यक चीजों में से एक है।
1: बिल्कुल।
0: भोजन के बिना हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था, लेकिन श्रोता साथियों, हवा के बिना कुछ मिनट के लिए भी हम जीवित नहीं रह सकते।
1: बिल्कुल मनीषा, आप यही बात करें श्रोता साथियों से, तो श्रोता साथियों, हवा प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। हम दिन रात सांस लेते हैं और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों, जब हवा स्वच्छ होती है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है और हमारे जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हवा में धूल, धुआं, जहरीली गैसें और प्रदूषक तत्व बढ़ जाते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। दूषित हवा के कारण सांस संबंधित रोग, अस्थमा, एलर्जी, खांसी और फेफड़ों की बीमारी बढ़ने लगती है।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वच्छ हवा बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनका शरीर प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें साफ वातावरण के अर्थ की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि साफ वातावरण का अर्थ केवल सड़क पर कचरा नहीं होना नहीं है। इसमें हमारे घर, स्कूल, कार्यालय, सड़कें, सार्वजनिक स्थल, जल स्रोत और आसपास की प्राकृतिक जगहों की भी स्वच्छता शामिल है। श्रोता साथियों, साफ वातावरण में स्वच्छ हवा, साफ पानी, उचित कचरा प्रबंधन, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त पेड़ पौधे और प्रदूषण का कम होना भी आवश्यक है। जब हमारा वातावरण साफ रहता है साथियों, तो बीमारियों के फैलने की संभावना कम होती है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारा जीवन है वो भी स्वस्थ और सुखद रहता है।
1: जी हाँ मनीषा, बच्चे देश का भविष्य है। यदि उन्हें बचपन से ही स्वच्छ वातावरण मिले तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। खुले और स्वच्छ वातावरण में खेलने वाले बच्चे अधिक सक्रिय रहते हैं, उन्हें सांस संबंधित समस्याएं कम होती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। यदि बच्चे प्रदूषित वातावरण में बड़े होते हैं श्रोता साथियों, तो उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और साफ वातावरण का क्या महत्व है, इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, तो ये बातें हमारे आगे भी श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से स्वच्छ हवा अगर रहेगी और स्वच्छ वातावरण रहेगा तो हम स्वस्थ रह सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, पेड़ पौधे प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक हैं। वे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: हाँ।
0: यही कारण है कि जहाँ अधिक पेड़ होते हैं वहाँ की हवा अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ होती है। पेड़ तापमान को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। कहना चाहेंगे कि गांवों और शहरों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके हम स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक व्यक्ति यदि मनीषा अपने जीवन में कुछ पेड़ भी लगाता है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा योगदान देता है। यही बात करें कि प्रदूषण के क्या कारण है तो हम देख रहे हैं कि आजकल वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, कारखानों का जो उत्सर्जन है, प्लास्टिक कचरे को खुले में जला दिया जाता है, पेड़ों की कटाई, रासायनिक पदार्थों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, खुले में कचरा फेंकना, धूल और निर्माण कार्य, ये सभी कारण हैं हवा और वातावरण को प्रदूषित करते हैं, मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता को लेकर उतनी ही आवश्यकता है जितनी शहरों में है। गांव में यदि नालियों की सफाई नियमित हो, कचरे का उचित निपटान हो, पेड़ पौधों की देखभाल की जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे कि स्वच्छ गांव न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर होते हैं बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देते हैं। इसलिए साफ सुथरा वातावरण लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देता है और सामुदायिक जीवन को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि प्रदूषित हवा है उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि प्रदूषित हवा का अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों, बुजुर्गों और पहले से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं वालों लोगों को विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रदूषित हवा से श्रोता साथियों आंखों में जलन, नाक और गले में परेशानी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और कई सारी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। लगातार खराब हवा के संपर्क में रहने से श्रोता साथियों, फेफड़ों और हृदय संबंधी स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए वायु प्रदूषण को केवल पर्यावरण की समस्या मानना उचित नहीं है साथियों, यह एक संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित भी समस्या है।
0: बिल्कुल मनीषा, स्वच्छ हवा और साफ वातावरण के लिए हर व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठा सकता है। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, कचरा इधर उधर न फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वाहन का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें, इसी के साथ कचरे को खुले में न चलाएं, जल स्रोतों को दूषित होने से बचाएं, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं और सामुदायिक स्वच्छता अभियान में भाग लें। श्रोता साथियों, छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सरकार और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार अलग अलग स्वच्छता अभियानों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों और प्रदूषण नियंत्रण योजना के माध्यम से प्रयास करती है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है मनीषा। जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक स्थायी परिवर्तन संभव नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य मानना चाहिए। श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन की नींव स्वच्छ हवा और साफ वातावरण पर टिकी हुई है।
1: जी हाँ।
0: यदि हवा प्रदूषित होगी तो वातावरण गंदा होगा तो हम आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी के कारणों को रोकने पर ध्यान देना होगा। इसलिए हमें अपने घर, गांव, स्कूल, कार्यस्थल, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, प्रदूषण कम करना है और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ सुरक्षित पर्यावरण देना है।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए श्रोता साथियों, स्वच्छ हवा केवल प्रकृति का उपहार नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जब वातावरण स्वच्छ होगा तभी समाज स्वस्थ होगा और जब समाज स्वस्थ होगा तभी देश प्रगति करेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा बड़े कार्यों की जरूरत नहीं होती है, हमारी छोटी छोटी आदतें भी श्रोता साथियों बड़ा बदलाव ला सकती है। एक व्यक्ति कचरा सड़क पर न डालने का निर्णय लेता है, दूसरा पेड़ लगाता है, तीसरा प्लास्टिक का उपयोग कम करता है और चौथा श्रोता साथियों जागरूकता फैलाता है। तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब लाखों लोग ऐसी छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में बड़ा परिवर्तन आता है। साथियों, कहना चाहेंगे कि प्रकृति केवल वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी या संपत्ति नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ हवा, साफ पानी, हरियाली और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि श्रोता साथियों आज प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगी और पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगी तो अंजलि जी हम देखते हैं कि भविष्य में ये समस्या है वो और भी बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमें अपने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से हम ये जान पाए कि किस तरीके से स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण का हमारे जीवन में महत्व है और इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है।
1: जी
0: आशा
1: हाँ।
0: करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को एक और प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवाना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंग्र अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: सेहत नु राज हूँ है बोन असल आदत ने सही खुराक है बोन जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह होवे सेहत है असली धन आपरो आज जीवन नो सहारो है आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जाऊ है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा अपड़े, अपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।